आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656569536 या 9656579902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456651 या 9797065775।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा, मिला ही नहीं
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99 393 65 930।

0: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434 03 62042434 03।
11: मैंने

0: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिशा की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा और बनाई गई रणनीति। सहयोग शिविर में जन समस्याओं का किया जा रहा है निदान। दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की हो गई मौत, लगभग आधा दर्जन घायल। पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 5 पशु भी हुए हैं जब्त। और मोबाइल टावर पर चढ़कर एक प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। इस दौरान डुमरिया पुल निर्माण, NH रोड के सौंदर्यीकरण, केंद्रीय विद्यालय हेतु जमीन स्वीकृति, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना एवं बस स्टैंड शिफ्टिंग समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जनहित योजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया गया, तो वहीं मौके पर सदर विधायक सुभाष सिंह, DM पवन कुमार सिन्हा, जिला परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ अंकुर राय, DDC गौरव कुमार सहित अन्य अधिकारी और दिशा के तमाम सदस्यगण शामिल हुए। इस बैठक में बलथरी चेक पोस्ट पर हो रही अनियमितता, गोपालगंज जिले के सभी स्टेशनों पर ठहराव के लिए रेलवे के अधिकारियों से रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, नल जल से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इस मामले में आवश्यक निर्णय भी लिए गए। जिला प्रशासन ने सहयोग शिविर की शुरुआत की है, जिसमें जगह जगह कैंप लगाकर जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज के सदर प्रखंड और माझा प्रखंड के कई पंचायत भवनों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रभारी सचिव और जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने का प्रयास भी किया। जिला प्रशासन ने बताया कि पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन कर जन शिकायतों को सरल और सुगम माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है और शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। दो अलग अलग सड़क हादसों में जहां दो लोगों की मौत हो गई, तो वहीं लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी भी हैं। बताया जा रहा है कि एक घटना माझा थाना क्षेत्र में हुई, जहां कोयनी में नेशनल हाईवे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माझा के कोयनी मस्जिद के पास यह भीषण दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें दरभंगा जिले के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के पुरानी मोहल्ला निवासी आरजू उम्र 29 वर्ष, उस्मान गनी 30 वर्ष, मोहम्मद अब्दुल नाजिर मनिहास निवासी मोहम्मद सरफराज अंसारी उम्र 26 वर्ष तथा बीघो राज टोली निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शेख उम्र 31 वर्ष, ये सभी लोग स्कॉर्पियो से गोरखपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उस्मान गनी के साले की तबीयत खराब थी और उन्हीं से मिलने सभी दोस्त एक साथ निकले थे, तभी इनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर मस्जिद के पास पलट गई, जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण हुआ कि वहां मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मंगलवार की देर रात हुए इस हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे पलट गई और घसीटते हुए गाड़ी के परखचे उड़ गए। इस दौरान स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने 112 पुलिस को सूचना दी और सहयोग कर सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद अब्दुल्ला शेख बताए जा रहे हैं। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अन्य 5 घायलों का अभी इलाज चल रहा है और उनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद देर शाम तक परिजनों को सौंपा था और हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। इधर कटिया क्षेत्र में भी एक सड़क का हादसा हो गया, जिसमें पैदल जा रहे कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव के हृदया राम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हृदया राम मुकेरी राम के पुत्र हैं और यह किसी काम को लेकर पैदल सड़क पर जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक सड़क पर गिर कर जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हृदया राम के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामलों की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पशु तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी लगातार पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में सिरीपुर थाना की पुलिस ने पशु तस्करों के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसमें शामिल 6 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5 मवेशियों को बरामद किया गया है। एक पिकअप गाड़ी, 2 स्कॉर्पियो और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस मिश्र बतरहा चौराहा के पास वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पिकअप वाहन पशुओं को लेकर जा रहा था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, परंतु वाहन लेकर वाहन चालक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर गाड़ी को पकड़ा और इसी मामले में जांच पड़ताल करते हुए आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए लोगों में अधिकांश गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस पशु तस्करी में लाइनर के साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और लाइनर गोपालगंज जिले का रहने वाला है। लाइनर ने स्वीकार किया है कि वह यूपी बॉर्डर से सिवान बॉर्डर तक लाइनिंग करते हुए पशु तस्करी के वाहन को पास कराता था। पकड़े गए आरोपियों में विशाल मिश्रा बेलाघाट थाना जिला गोरखपुर का निवासी है, आदर्श सिंह सहजनवा थाना जिला गोरखपुर का रहने वाला है। इसमें लाइनर खुर्शीद आलम गोपालगंज के सिरीपुर थाना क्षेत्र के पांडे परसा का निवासी है और ऋषि पाल यह गोरखपुर के कोतवाली थाना का रहने वाला है। मनीष कुमार यह सहजनवा गोरखपुर का निवासी है और मुकेश कुमार भी गोरखपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी गाड़ी और पशुओं को जब्त करने के बाद पुलिस अब इन पर पशु तस्करी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इधर माझा थाना क्षेत्र के जनटोली गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि पंचायती में शादी की बात नहीं बनने से नाराज एक युवती ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर इंसाफ की गुहार लगाते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची रही। भारी संख्या में लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मान मनोबल के बाद कई घंटों तक पुलिस ने इस मामले में लड़की को समझाते बुझाते हुए टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि एक वर्षों से प्रेम प्रसंग में पागल यह लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई और चढ़कर लगी हंगामा करने। यह लड़की बैकुंठपुर की रहने वाली सिंधु कुमारी है, जो पिछले एक वर्षों से अमरजीत कुमार के साथ प्रेम कर रही थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों की सहमति नहीं मिलने से मामला लगातार उलझता जा रहा था। रिश्ते को लेकर गांव में कई बार पंचायती भी बुलाई गई। बताया जा रहा है कि इसमें लड़का पक्ष के लोग राजी नहीं हो रहे थे और इसी से नाराज होकर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी। अचानक इस ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को देखने के लिए भारी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी कई घंटों के मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा गया। पुलिस ने अब स्पष्ट लोगों से अपील किया है कि ऐसी घटना शर्मनाक है और ऐसा करने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस युवती को हिरासत में लेकर गई है और इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज तीन अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में हुई, जहां काली मंदिर हाई स्कूल के पास पुलिस ने छापेमारी कर विशाल कुमार बैठा को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी में नेशनल हाईवे पर हुई। यहां एक ऑटो रिक्शा पर लेकर जा रहे भारी मात्रा में शराब को पुलिस ने जब्त किया। इसमें पूर्वी चंपारण के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी सुनील महतो और दूसरा चुट्टून यादव बताया जा रहा है। इनके ऑटो रिक्शा से 67 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर इनकी शराब और ऑटो रिक्शा को जब्त किया है। तीसरी कार्रवाई जादोपुर के गमहरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले अमावस यादव पर हुई। इसको भी पुलिस ने 12 लीटर से अधिक शराब के साथ गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा में गिरफ्तार कर लिया। इसकी भी मोटरसाइकिल जब्त की गई है। अब इन सभी शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज श्रम विभाग ने भी धावा दल के माध्यम से छापेमारी करते हुए भोरे रोड में एक जनरल स्टोर से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई क्षेत्रों के पदाधिकारी और पुलिस के जवान भी थे। दो जगहों से हुई छापेमारी से दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर अब संस्थान के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक रवि जनरल स्टोर और बीके गारमेंट्स है और दूसरा कोलकाता स्वीट हाउस है। दोनों जगहों से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है और अब दोनों ही संस्थानों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रमिकों को प्रति बाल श्रमिक 3,000 रुपए की राशि मुआवजा के तौर पर भी दी गई है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से 11 लोग घायल हैं। घायलों में संगीता देवी, प्रभावती देवी, तारा देवी, महंत राय, नीतीश कुमार, विक्रम राय, जगलाल राय, चंदन कुमार, मुन्नी देवी, किशोर राय, रामायण राय का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामलों की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले के कई क्षेत्रों में बरसात शुरू होने से पहले अब पशुओं को विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर पशु चिकित्सालयों में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिशा की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा और बनाई गई रणनीति। सहयोग शिविर में जन समस्याओं का किया जा रहा है निदान। दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की हो गई मौत, लगभग आधा दर्जन घायल। पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 5 पशु भी हुए हैं जब्त। और मोबाइल टावर पर चढ़कर एक प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
5: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
4: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
5: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
4: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
4: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा, मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
16: आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, एक ऐसा नाम जो आपने कभी नहीं सुना होगा, पर इस आदमी के म्यूजिक से आज के दौर में किसी भी जनरेशन का कोई भी इंसान अछूता या अनजान नहीं है। वैसे तो ये पिछले कुछ सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में है, लेकिन पिछले एक साल में इन्होंने बॉलीवुड में सबसे पॉपुलर म्यूजिक कंपोज किया है। इनके गाने वरुण धवन, सोनम कपूर, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के अलावा बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान पर भी फिल्माए गए हैं। ये हैं इंडिया के लेटेस्ट रैपिंग सेंसेशन बादशाह।
17: हाय, मैं हूँ बादशाह।
16: तो आइए जानते हैं आदित्य सिसोदिया के बादशाह बनने की और म्यूजिक में आने की कहानी, साथ ही इनके यूनिक इंट्रोडक्शन स्टाइल के बारे में।
17: शुभोय बादशाह, ये शुभोय लाइक मतलब जैसे बाहर कहते हैं शुभोय, बचपन में सुनते रहे ना, तो मतलब आपका मतलब यार तुम्हारा ही हूँ मैं, शुभोय लाइक तुम्हारा दोस्त हूँ मैं। सो दैट्स हाउ ये ऐसे बाहर ग्रीट करते लोगों को, तो ये चीज थोड़ी हमने बाहर से उठा ली। और ये जो लहजा है शुभोय बादशाह, ये बोलने में अच्छा लगता है मुझे ही नहीं सबको। बादशाह यार, एक तो आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन, तो उनको बादशाह कहते हैं, तो मतलब मुझे लगा मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। वो दिल्ली से उठे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, और आज जो उनका मुकाम है पूरी दुनिया जानती है उनको। और दूसरा, मैं मतलब जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ, तो इसीलिए मतलब जब सोना होता है सोता हूँ, उठना होता है उठता हूँ, तो बादशाह। म्यूजिक तो हमेशा से ही था, जब से छोटे थे घर में बहुत लोग बहुत गाने सुने जाते थे, पापा को गानों का सुनने का बड़ा शौक था, गाने का भी था शौक, गा नहीं पाए। मम्मी पंजाब साइड से थे तो गानों में ही पला बड़ा हूँ मैं। हमारी फैमिली से कोई था नहीं वैसे गाने बजाने की फैमिली में, मतलब फील, बट पता ही नहीं चला कब रुझान इसकी तरफ बढ़ता गया। और रैप लिखने का मुझे हमेशा से, मतलब हमेशा से इनफैक्ट मुझे स्टोरीज सुनाने का शौक बहुत, स्टोरीज लिखना, उनको राइम करना मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। ये पूरी प्रोसेस कि आप वर्ड के साथ काफिया के साथ काफिया जोड़ रहे हैं, एक कहानी बन रही है और वो दूसरा सुन रहा है, मतलब
16: ये कहानी है।
17: हाय, मैं हूँ बादशाह और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी।
16: दिल्ली की पंजाबी फैमिली में पैदा हुए बादशाह पर हरियाणवी इन्फ्लुएंस उनके पिता के कारण रहा। चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग करने गए बादशाह के गाने आज हर पार्टी और डिस्कोटेक में बजते हैं। शायद इसीलिए लोगों को ये भी लगता है कि वो सिर्फ पार्टी वाले गाने बनाते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है।
17: आपने सुने वो वाले हिट ज्यादा वो वाले होते हैं क्योंकि वो मास को कैटर करते हैं ना, क्योंकि हर बंदा पार्टी करता है, जो नहीं करता वो करना चाहता है। तो पार्टी जब, और हर बंदे की लाइफ में लड़कियां भी आती हैं, सीधी सी बात है, तो वो आप खुशी वाला टॉपिक्स होते हैं तो वो चीजें लोग ज्यादा सुनते हैं। तो सीरियस रैप भी हैं तो जो रैप के फैंस हैं वो चीजें ज्यादा सुनते हैं, और हर तरह के है ऑडियंस, बट पार्टी वाले इसलिए क्योंकि पूरी म्यूजिक की कोई लैंग्वेज भी नहीं होती तो सब उसको एंजॉय कर पाते।
10: ये है मेरी कहानी।
17: मैंने कर्मा पे गाना बनाया, एक गाना आया था मेरा बंदूक, तो काफी हिट हुआ है वो। एक मैंने फीमेल फिटी साइड पे बनाया हुआ, हरियाणा पंजाब में ये प्रॉब्लम बहुत प्रसिस्ट करती है तो उसके लिए बनाया हुआ है। और मैंने एक ऑनर किलिंग पे गाना बनाया हुआ है, पिंजरा करके गाना था, प्यार आवारा पंछी है, जैस्मिन सैंडलर्स जिन्होंने उगाया था यार ना मिले, उनके साथ गाना किया था। तो गाने तो बहुत बनाए मैंने, सुने कुछ कुछ ज्यादा नहीं है। एक ऐसा गाना जिसपे पूरी दुनिया, सारी दुनिया जो सुने हैं उसको एंजॉय करे, जैसे एक गैंगनम स्टाइल आया था उसको पूरी दुनिया ने सुना, मैटर नहीं करता वो कौन सी भाषा में है क्या है, लेकिन सारी दुनिया ने सुना। तो ऐसा सा एक गाना बनाने की ख्वाहिश है।
18: अकर बकर बम्बे वो असीन

0: बफे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 2:15 जो होता है होने दो।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।
14: मेरी कहानी,
15: कहानी है।
16: हाय मैं हूँ बादशाह,
15: पूरी इंडिया को एक के बाद एक पार्टी नंबर्स देने वाले बादशाह। पर्सनली पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, यकीन नहीं होता ना? आइए उन्हीं से सुनिए और साथ ही ये भी जानते हैं कि जब खुद पार्टी नहीं करते तो पार्टी के लिए इतने सटीक रैप्स लिखने के आइडियाज उन्हें आते कहां से हैं? उनका खुद का रैप करने का फॉर्मूला क्या है, इंस्पिरेशन क्या है?
17: मैं काम काम काम काम, जब काम नहीं तो सोना सोना सोना सोना, सोना। जब सोना नहीं तो खाना खाना खाना, बस ये तीन चीजें मेरी लाइफ में। पार्टी वार्टी नहीं करता मैं, मेरे को पार्टी करना पसंद ही नहीं, मेरे को ज्यादा जोर शराबे में कुछ होने लग जाता है। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं पहाड़ों में, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो पहाड़ बहुत पास है वहां से, तो वहां चला जाता हूँ। ना मैं दारू पीता, ना मैं स्मोक करता, कुछ नहीं, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल है। कोई होता फॉर्मूला तो हर रैप अच्छा होता है, हर रैप दुनिया सुनती है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने किया उससे अलग करूँ, बट हो नहीं पाता। यही है कि कोशिश करता हूँ अच्छे गाने बनाता हूँ, मतलब और पार्टी गाना मेरे को ये नहीं है मेरे को अपने पार्टी गाने पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है अपने पार्टी गाने, मतलब लोग कहते हैं आप मेरे जैसे गाने बना के दिखा देंगे सुन के, और लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है ऑलरेडी, इतने पके हुए अपनी जिंदगी से, मेरे गानों को बहुत खुश हो गए नाच, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है।
15: कहानी है।
17: हाय मैं हूँ बादशाह और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी।
15: डीजे वाले बाबू, वक्रा स्वैग, बाकी बातें पीने बाद। आज जिस बादशाह के एक एक यूट्यूब वीडियो पर लाखों करोड़ों हिट्स हैं, सैटरडे सैटरडे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सेल्फी ले ले रे और चार शनिवार जैसे चार बस्टर सॉन्ग्स बनाने वाले उसी बादशाह को अपनी पहली रैप के लिए सिर्फ 200 रुपए मिले थे। आइए जानते हैं बादशाह के स्ट्रगलिंग डेज की कहानी और उनके लाइफ के फंडे।
17: मुझे अपने पहले रैप के लिए आज हम कितने कितने लाख रुपए मांगते हैं, मुझे अपने पहले रैप के लिए 200 रुपए मिले थे और उसमें से चंडीगढ़ से जलंधर गया था मैं वो रैप करने, तो 50 रुपए की आने जब 25 रुपए की एक साइड की टिकट पड़ती है बस की, 150 बच्चे थे जिसमें 50 रुपए का मैंने तेल डलवाया था अपनी बाइक में और 100 रुपए की पार्टी करी थी फुल। तो कभी इस चीज की मैंने परवाह नहीं करी कि मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, काम उस टाइम भी उतना ही मेहनत करते थे आज भी उतनी मेहनत करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि परवाह नहीं करनी चाहिए, मेहनत करो फल तो ऊपर वाला दे ही दे, कम दे ज्यादा दे उसके ऊपर है, टाइम से सब आता है यार।

0: मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
8: मेरी
9: कहानी है।
10: हाय, मैं हूँ बादशाह।
9: एक थ्योरी के मुताबिक रैपिंग की ओरिजिन सैकड़ों साल पहले अफ्रीका में हुई थी। पिछले दशक में रैपिंग गानों के बीच बीच में आते छोटे छोटे हिस्सों में होती थी। वीडियो में रैपर्स यूजुअली फॉरेनर्स होते थे। पिछले 5 सालों में रैपिंग बेस्ड सॉन्ग्स बनने लग गए, वो भी ऐसे जिसमें अब सिंगिंग छोटे छोटे हिस्सों में होती है। ऐसा ट्रेंड सेट करने में बादशाह का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए उन्हीं से जानते हैं इंडिया में रैपिंग के एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स और फ्यूचर के बारे में।
10: अगर कोई बंदा जो रैप करना चाहता है, वो हमें देखकर इसलिए इंस्पायर हो रहा है क्योंकि हम स्टार हैं या हम इतने बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने कर रहे हैं या हमारा लाइफस्टाइल है ऐसा, तो ए वो सक्सेसफुल नहीं होएगा, बी वो इंडिया के रैप के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। बट अगर कोई रैप इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके पास कहानी है सुनाने के लिए, अपनी जिंदगी की, किसी और की जिंदगी की, या कोई ऐसी कहानी जो दुनिया जो सुनने वाले पर कोई असर छोड़े, तो आई थिंक रैप का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो यही दो चीजें हैं जो डिफाइन करेंगी रैप के फ्यूचर को। और जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने सुना है, दोनों तरह के लोग हैं। बट जो रैप को इसलिए परस्यू कर रहे हैं क्योंकि उनका पैशन है, वो कम है और वो हमेशा कम होते हैं। तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वरिड अबाउट द फ्यूचर ऑफ रैप। आई थिंक अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगा, मैं वापस ग्रास रूट लेवल पे जाऊंगा। बट अब ये मूवमेंट शुरू हुआ है, इसको खत्म नहीं होने देंगे। हरियाणा में एक शादी में था मैं, बहुत हरियाणा के रिमोट एरियाज में थी, तो वहां पे एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, वो बैठी हुई थी और वहां पे अजीब अजीब गाने चल रहे थे जो शायद उनको समझ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने, वो डीजे वाले को कहना चाह रही थी कोई हरियाणवी गाना लगा दो, तो उन्होंने जाके डीजे वाले को कहा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। तो वो लाइन मैंने सुनी और वो मेरे दिमाग में बैठ गई। तो ऐसी ऐसी बहुत इन्फ्लुएंस है, जैसे सैटरडे सैटरडे जो मैंने लिखा था। बट ये जो रैप है ये बहुत कमर्शियल, ये पॉप रैप है, ये शायद हमने एक नया रैप शुरू किया इंडिया में। तो सैटरडे सैटरडे था, वो एक मेरा कजन था, हम ड्राइव कर रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, तो वो फोन पर था और लड़ रहा था किसी से, और एकदम से उसने फोन रखा और मैंने पूछा क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा शायद। तो कहता यार कुछ नहीं आ रहा, जब देखो सैटरडे सैटरडे करती रहती है, इसका काम ही नहीं है, पार्टी करनी है इसने। तो ऐसे ऐसे इंस्पिरेशन मिलते हैं, और अपनी लाइफ से तो कम ही मिलता है मुझे क्योंकि मैं बस क्लब बहुत कम जाता हूँ, तो औरों की लाइफ से काफी सारे इंस्पिरेशन मिल जाते हैं।
9: जाते जाते आइए जानते हैं कि हजारों लोगों के आइडल बन चुके बादशाह खुद किसको अपना गुरु मानते हैं।
10: मैं अपना गुरु मानता हूँ जिंदगी को, जो मेरे साथ, जो मैं हर दिन जी रहा हूँ, मैं उस चीज को अपना गुरु मानता हूँ, उसी से सीखता हूँ मैं। और इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो ऐसा कोई गुरु नहीं है। बट शाहरुख खान मेरे को इंस्पायर बहुत करते हैं, हालांकि वो उनका रैप से कुछ लेना देना नहीं, बट यू नो ही आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट गाय। आई थिंक ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड जिस तरह से उन्होंने अपने आप ब्रांड बनाया अपने नाम का, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। तो क्या करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्या नहीं करना है ये मैं बता देता हूँ। किसी को कॉपी नहीं करना है, और इंस्पायर होना ठीक है, इन्फ्लुएंस होना थोड़ा सा, मतलब आप इन्फ्लुएंस मत हो, इंस्पायर हो। और आपको ये पता होना चाहिए आप रैप क्यों कर रहे हो। आप रैप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लड़की पटानी है, कोई इंप्रेशन जमाना है, नहीं फिर ठीक है खत्म हो जाएगा। आप रैप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, खत्म हो जाएगा। आप रैप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप रैप किए बिना रह नहीं सकते, तो मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप रैपर बन जाओगे, आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हैं।
9: जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कई कहानियां करेंगी आपका इंतजार

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी हेतु कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैनपट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: श्रोताओं, इस जुनून भरे गीत के साथ दीजिए इजाजत सरफिरोजी और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
9: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है समुना तुर्मी।
3: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
10: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
3: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: एडमिशन फ्री
13: कहाँ पर?
14: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
13: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
14: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
13: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
15: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
16: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
17: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
16: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
18: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
19: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
20: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
21: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
22: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
23: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
22: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
23: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
22: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
24: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
25: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
24: तो देर मत कीजिए,
25: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टूरिज्म गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करे 87894 18744।
13: गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, यू नो व्हाट्स चूड़ी?
14: नो,
13: चूड़ी मींस बैंगल। You want to try some churiya?

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007006575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
12: बहुत क्यूट है यार। अरे वो क्यूट है, तेरा भाई भी तो क्यूट है। डोंट वरी ब्रदर, राम जी की लारी, लेट्स गो।

0: बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राशि का हस्तांतरण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के छठे राज्य वित्त आयोग की पूर्व स्वीकृत अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि यदि अनुदान राशि का हस्तांतरण नहीं होता तो ग्रामीण और शहरी निकायों की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस स्थिति से बचने के लिए 2021-25 तक लागू व्यवस्था के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण और योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में वायल राइस उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है।
1: नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गया जी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10,40,00,000 रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के अंतर्गत अब रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ परिवहन विभाग और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें भी इस हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। राज्य तकनीकी सेवाएं और संचार के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे।
2: डायल 112 पूर्णतया से निशुल्क सर्विस है और अभी इसमें हम लोग और भी काफी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम लोग पैनिक बटन्स लगाएंगे जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए।
0: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,347 लाभार्थियों का चयन किया गया है। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने योजना के अंतर्गत आवेदकों का औपबंधिक चयन किया। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 3 किस्तों में लगभग 910 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें 50% राशि अनुदान और 50% राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले के महसी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को मामले की अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रोफेसर केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाह फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पटना, गया और कटिहार समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान रोहतास का डेहरी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 41.5, छपरा का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए भोजपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 23 जून तक जारी रहेगा। प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मधुबनी जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर बलिराजगढ़ के व्यापक उत्खनन के लिए 10 वर्ष की परियोजना शुरू करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर श्री झा ने दरभंगा स्थित मिथिला शोध संस्थान को ज्ञान भारतम मिशन में शामिल करने का भी आग्रह किया। रेलवे ने वाराणसी मंडल को गोरखपुर कैंट पनियहवा रेलखंड के उनौला पिपराई स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य को लेकर 8 जून तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। इसके चलते नरकटियागंज गोरखपुर कैंट खंड की कई सवारी रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं लालकुआ कोलकाता स्पेशल ट्रेन, दिल्ली मोतिहारी स्पेशल ट्रेन, दिल्ली सीतामढ़ी और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन समेत 16 स्पेशल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा कटिहार दिल्ली एक्सप्रेस और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस समेत 13 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इधर रेलवे ने दानापुर मंडल के नवादा और बारसलीगंज स्टेशनों के बीच स्थित बाघी बरडीहा स्टेशन पर जमालपुर गया मेमू ट्रेन को 25 मई से 1 मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव चाय के टिकाऊ उत्पादन, उपभोग और व्यापार को बढ़ावा देता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। चाय का उत्पादन और प्रसंस्करण लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। चाय की उत्पत्ति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी यह 1,30,00,000 से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानव तस्करी, मादक पदार्थों के सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, अतिक्रमण और जाली नोटों पर अंकुश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय जिलाधिकारी आनंद शर्मा और नेपाल के सिरहा जिला के CDO सुरेंद्र पोडेल शामिल समेत दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सारण जिले के छपरा में जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने पर जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 106 पंचायत सचिवों पर ₹1,000 का अर्थदंड लगाया है। इस राशि की कटौती पंचायत सचिवों के वेतन से की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की डेल्टा रैंकिंग में जिले ने कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। औरंगाबाद जिले में रिसियप थाना क्षेत्र के पहरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मौके से सिलेंडरों के अलावा 90 गैस पासबुक, उज्ज्वला गैस चूल्हा तथा अन्य उपकरण बरामद किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के नौबतपुर में सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को 37,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली के तहत यह राशि ले रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीएससी 2027 सिविल सेवा प्रीलिम्स 23 मई को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03। सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
12: कहाँ पर?
11: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
12: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
11: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
12: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up, hello.
14: Now
13: pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से है।
2: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ मुंबई।
1: ठीक, कैसे हैं?
2: ठीक है, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
2: अभी काम कर रहे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: मुझे गाना सुनना है, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे हो सी दीवाना
1: जी। और सुनवाना भी है
2: जी। सबसे पहले आपको कमरान भाई, समीर भाई, अरमान भाई, लक्की भाई, शाह भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबीना जी, दीप्ति जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, सबनम जी, सभी को सुनवा
1: जी। तो प्ले करेगा ना
2: जी?
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लो माय चॉइस में कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो मैम
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: जी मैम मैं सुगत बोल रहा हूँ।
15: जी क्या हाल चाल है?
14: अपना बताइए।
15: हमारा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
14: अभी काम हो रहा है, टाइम निकाल के आपसे बात हो रही है।
15: चलिए बढ़िया किया। तो गाना कौन सा सुनना है?
14: मैम हमको गाना सुना दीजिए, फेमस सिंह का गाना आया है नया वाला, लस्सी वाला बनारस पिला दे।
15: एक बार और बताइए नाम गाने का।
14: हमको बनारस का लस्सी पिला दे।
15: बनारस का लस्सी पिलाई दे।
14: हाँ नया गाना आया है।
15: अच्छा अच्छा, और
14: हाँ गाना देखिए सबको, जितने रिंगिंग सुनने वाले छोटा सा है और आपको भी, आपकी टीम को भी।
15: ओके चलिए, तो प्ले करेगा ना?
14: जी धन्यवाद,
15: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी सर, हम
1: क्या हाल चाल है सर जी?
0: ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है। आप कैसी हैं?
1: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ जी।
0: धूप हुआ है?
1: हाँ, धूप तो हुआ है यहाँ,
0: अभी तो धूप हुआ है, बहुत अच्छा धूप हुआ है। बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा है।
1: जी जी,
0: दो तीन दिन प्रोग्राम बंद, ये रिकॉर्डिंग बंद था क्या?
1: दो तीन दिन तो बंद था, लेकिन शुक्रवार को हुई तो थी रिकॉर्डिंग।
0: शुक्रवार को हुई थी?
1: जी हाँ, बिल्कुल हुई थी।
0: तो उस दिन हम ट्राई नहीं किया, कटनी पिटनी का समय है, करना पड़ रहे हैं कि वो भतीजी है, वो फरमाइश ही है, सही है, हमको भजवा दीजिएगा। कोई पाकिस्तानी सीरियल है, सीरियल का नाम है सफारा, उसी सीरियल का गाना हम सुनना चाहते हैं
1: जी, और सुनवाना भी है।
0: हाँ, पहले तो आपको और जितने भी फैमिली वाले हैं उन सभी बच्चों को, वो बच्ची, हाँ
1: जी जी,
0: वो बच्ची बहुत जिद कर रही थी कि अबू तो फरमाइश, ये फरमाइश
1: जी, तो
0: ठीक है, हम
1: गाना जी जी गाना प्ले करें
0: जी। बहुत बहुत प्रिय,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस में कॉल किया।
0: थैंक यू।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
9: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: आपको भी कैसे हैं सोनू मैम?
1: बिल्कुल बढ़िया। आप लाल बहादुर बात कर रहे हैं?
2: जी जी
1: जी,
2: आप बिल्कुल बोल्ड है सोना, आप समझ जाते हैं हम आपके लोग आंधी तूफान की तरह आपकी सोच है कि नहीं। 2020 के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल बैक टू बैक छक्के मारते हैं, गेम जिता देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो आज गाना कौन सा सुनना है लाल बहादुर जी आपको?
2: आज सुना दीजिएगा, बम्बई से गया गोवा, गोवा से गया पुणे, सजना मिला नहीं,
1: सजना
2: जी फिर मिला नहीं सर।
1: और सुनाना भी है
2: जी?
1: गाना डेडिकेट भी करिएगा
2: जी, हमारे पड़ोसी धर्म प्रसाद
1: इरफान जी,
2: जी हाँ सुनाना चाहेंगे हमारे माध्यम से। दुबई में जहाँ भी रहे अच्छा से रहे
1: जी जी बिल्कुल।
2: और हम लोग ऐसे धर्म प्रसाद पढ़े गए हैं, पड़ोसी में हाई स्कूल में ही पढ़ते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो कल उसमें लोकप्रिय एक्सप्रेस में सुनाए थे तुम गायक है कि नहीं?
1: जी जी बिल्कुल, तो प्ले करे गाना आपकी
2: हमारे जितने भी सुनने वाले तो यह स्वस्थ अभियान पंचायती राज से ग्रामीण का सबका और इंजीनियर सारे को ठीक है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लंबाई चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जी 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: हम रामेश प्रसाद थावे बाजार से बात करते नहीं
1: जी। का हाल चल बा?
0: ठीक बा, अपन सुनाई।
1: हमरो बढ़िया बा, का होत रहे?
0: का होत ल, फोन लगाओत नहीं रोवा के, बिजी बिजी आवत ल। मैडम एगो गाना सुने के बा
1: जी। बिल्कुल सुनाई गाना, बता दी नाम गाना के।
0: ना वही रहता है चेहरे बदल जाते हैं, सुनवाये सबसे पहले रोवा के। थावे से रामा जी, फूफा बानी, अरिंदर जी, वीरेंद्र जी, कसलार जी, जितना भी लोग रेडियो सुनने वाला बा, सब लोग सुनावे के चाहत नहीं
1: जी। चलिए ठीक बा, तो प्ले करता नहीं गाना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग।

0: तीन चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
2: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
2: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
3: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: मनीष को साथ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से।
2: क्या हाल चाल है मनीष जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
2: हमारा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
1: क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं अभी। काम पे ही है। आप अपना बताइए, क्या कर रहे हैं?
2: हम भी काम ही कर रहे हैं अपना, आप लोगों से बातें कर रहे हैं।
1: तो उधर का मौसम कैसा है?
2: इधर का मौसम भी बढ़िया है, आज धूप निकला हुआ कड़ाके वाली।
1: इधर धूप बहुत तेज हुआ है।
2: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: गाना सुनना है खेसारी लाल यादव का थर्ड सॉन्ग। थर्ड सॉन्ग है?
2: थर्ड सॉन्ग कौन सा?
1: हमारा प्यार के बदला में बोल टुका दे लगा रहे
2: जी। और सुनवाना भी है?
1: हाँ जी,
2: गाना सुनवाना भी है।
1: सभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को सुनाना है।
2: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: प्ले करिए। मैडम कब बजेगा ये गाना? शाम को
2: आज या कल में कभी भी।
1: दो बार तो कॉल किया, आप उठा के काट दिए।
2: नहीं, मैं क्यों काटूंगी उठा के?
1: दो बार कॉल मेरा लगा, फिर कट गया, फिर ट्राई करने लगा, फिर लगा है।
2: नहीं, मैं काटूंगी क्यों? कट गया होगा नेटवर्क इश्यू की वजह से, लेकिन मैं कॉल नहीं काटती हूँ किसी का भी।
1: ठीक है
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: मैं रमेश लिखा हूँ, जादूपुर बढ़ा से।
1: जी, कैसे है रमेश?
0: बस मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं जी?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रही थी अभी?
0: बस अभी तो बिस्तर पर लेटा हूँ जी। मुझे गाना सुनना था जी।
1: जी बिल्कुल, सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: नमक लाल की वो गाना सुनना है मुझे, पागे घुंघरू बांध मेरा नाची।
1: पर घुंघरू बांध मेरा नाची है, वही ना?
0: हाँ जी।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ सुनाना है, सबसे पहले आपको और हमारे फैमिली सब है उनको, रेडियो से जुड़े हुए सबको, और रिक्वेस्ट है आपसे।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना या फुल बजाया कीजिए, क्योंकि बीच में आप लोग कट कर देते हैं।
1: गाना तो फुल ही चलता है लोमाई जो इसमें।
0: नहीं, बीच में कभी कट कर जाता है जी, क्योंकि मैं डेली सुनता हूँ।
1: अब ये शिकायत तो पहली बार आप ही की आई है कि लोमाई जो इसमें भी गाना करता है।
0: हाँ, पहली बार मैं इतने बार गाना देखा हूँ, बीच में कट कर जाता है। रिक्वेस्ट है।
1: ओके, चलिए, ध्यान रहेगी आपकी बातों को।
0: कब तक सुनने को मिलेगा जी?
1: आज शाम को या कल शाम को, कभी भी आ सकता है, आज और कल में।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोमाई जो इसमें कॉल।
0: थैंक यू।

0: अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87-894-18-744।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
17: नमस्ते दी।
16: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
17: ठीक है, अपना बताइए।
16: हमारा भी बढ़िया है। क्या हो रही थी?
17: दौरी हो रहा है। कम्बाइन खेत में आ गया है, कम्बाइन से कटाता है अब दौरी। और
16: अच्छा अच्छा, कम्बाइन से कटाता है तो साथ में दौरी भी होते जा रहा है क्या?
17: वो कम्बाइन खाली गेहूं निकाल कर दे देगा और चावल सब रह जाता है।
16: चलिए तो बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
17: अपने पसंद से कोई बजा दीजिएगा।
18: इतना बताइए आपको किसकी आवाज में सुनना है?
17: खेसारी लाल का आवाज सुना दीजिएगा।
18: खेसारी लाल का आवाज में कोई भी और सुनवाना भी है
17: आज तेरे सुन रहे सभी दोस्तों को और आपको भी।
18: जी तो प्ले करेगा ना?
17: हाँ
18: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमसी में।
0: थैंक यू मैम। अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: हमारा भी बढ़िया है।
0: और रेडियो रिमसी की टीम सब ठीक है ना?
1: जी जी, टीम भी बढ़िया है, अपने अपने ड्यूटी में लगा हुआ है वो भी।
0: वही ड्यूटी अच्छा है। कहे कि हम लोग का ड्यूटी है कि दिन में काम कर रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल पे, और फिर शाम को या फिर खूब सुबह सुबह ही एकदम 4 बजे उठ जाना है, खेत में भी जाना है।
1: खेत में तो हमें भी जाना है भैया, ऐसा बात नहीं है। रात को 1 बजे तक हमारे घर खुद ही दौरी हुआ है। 1 बजे आकर घर पे नहा धो के खाते पीते 2 बज गया सोने में। खेत में तो हम लोग को भी जाना है, खेत तो सबके घर है, जो गाँव में है तो खेत में जाना है, चाहे वो कितना बड़ा इंजीनियर कहे ना बन जाए।
0: कहे ना बन जाए,
1: गाँव में अगर घर है अपना खेत है तो जाना ही है,
0: जाना ही है।
1: या तो काटने जाइए, जी जी, या तो काटने जाइए या फिर कटवाने जाइए, मशीन से कटवाइए या जाना से कटवाइए लगा के, जैसे भी, लेकिन जाना तो है,
0: जाना तो है,
1: इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बात बहुत हुई, गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: गाना हमको आशा भोसले जी का सुना दीजिएगा, उनकी ही स्मृति में सुनना है हमें, क्योंकि कल का उनका स्वर्गवास हुआ है, तो उन्हीं का एक गाना है, इन आंखों के मस्ती के मस्ताने हजारों हैं।
1: और
0: डेडिकेशन, मतलब वो जहाँ है उनका आत्मा, उनको, बाकी सारे लिसनर्स को।
1: जी
0: जी,
1: चलिए ठीक है, फिर बात होगी।
0: जी
1: जी, बहुत धन्यवाद। समय चाहिए।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
7: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
6: हेलो,
7: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, भागे भागे फिरते हैं।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हाँ जी नमस्ते।
10: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 104 FM में।
9: जी योगेश जामले जी, मैं तेरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
10: जी क्या हाल चाल है योगेश जी?
9: बढ़िया है, अच्छे हैं।
10: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
9: फिल्म मथानेदार से सुनवा देंगे, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में कल भी रोनाना।
10: जी और सुनवाना भी है?
9: श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है।
10: जी तो प्ले करें गाना।
9: जी हाँ जी हाँ जी,
10: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं चॉइस में कॉल किया।
7: Oh,

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी हम बनारस
1: जी का हाल चल रहा?
0: बढ़िया हो। गाना सुनना है?
1: जी बिल्कुल, सुनाएंगे गाना, बता दीजिए नाम गाने का।
0: जी मझधार मूवी है सलमान खान का, उसमें का गाना है क्या जमाना आ गया, रोते रोते मुस्कुराना आ गया, ये गाना है
1: जी। और सुनवाना भी है
0: जी, सबसे पहले आपको और जितने हमारे दोस्त लोगों सभी को
1: जी। तो प्ले करेगा ना?
0: जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं जो इसमें कॉल किया।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.
10: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
12: नमस्ते मैम।
11: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
12: मनीषा कुमारी तरिया सुंदर से।
11: जी, कैसी है मनीषा जी?
12: मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
11: हम भी बढ़िया है। क्या हो रही थी?
12: अभी तो कॉल लगा रही थी, 100 बार कॉल लगा दी आपके पास, अभी जाकर लगा है।
11: चलिए, फाइनली लग तो गया।
12: बड़ी मेहनत के बाद कॉल लगा है।
11: तो गाना
12: आपका
11: है?
12: खाना खा लिए?
11: जी हाँ, बिल्कुल खा लिए हैं। आपका खाना पीना हुआ?
12: हाँ, हो गया है मेरा भी।
11: ये बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
12: आज सुना दीजिए मेरा गम एक जैसा सनम अकेले जगले दिल भर जानी।
11: जी, और सुनवाना भी है?
12: जी मैम, आपको और अपने भैया भाभी को और दीदी को और छोटे भाई को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी RJ को।
11: ओके, चलिए, तो प्ले करेगा ना आपकी?
12: जी मैम।
11: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
12: थैंक यू मैम,
11: वेलकम।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जात, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH27 बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
8: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है, तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
8: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
11: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277165696 पे। तो आप यदि इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर पे और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का और हमारे नंबर पे सेंड करने का। यहाँ पे पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय, आप कैसे हैं, सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या। तो बिल्कुल इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और अभी इन्हीं का मैसेज हमारे पास रिसीव हुई है तो इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जैसे आप सभी का मैसेज हमारे पास पहुंचता है वैसे आप सभी के मैसेज को शामिल करेंगे और फिर आप सभी के फरमाइश को पूरा करने का एक एक करके प्रयास करेंगे। फिलहाल गाने को एंजॉय किया जाए, सुना जाए रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

झूठा झूठा झूठा।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे काफ़ी प्यारे ओल्ड इज गोल्ड गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ था, और इस गाने के फरमाइश करती थी की थी मनीषा फ्रॉम अमा मौजम से। और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, और गाने का बोल दिया गया है आने से उसके आए बाहर। तो चलिए इनकी फरमाइश हम पूरी करते हैं, और सुरेश मिस्त्री जी इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं, और माझा थाना क्षेत्र कमलपुरा के रहने वाले हैं। तो चलिए आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ, और हम लोग भी हैं आपके साथ। सुनते हैं रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

काफी प्यारा सॉन्ग, रेडियो एम सी एम 90.4 FM पे सुन रहे हैं और रफ़ी साहब जी की आवाज़ में। और आगे मैसेज कई पहुँचे हुए तो आगे बढ़ेंगे और आगे भी मैसेज हम शामिल करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो भाई कैसे हैं, मैं श्वेती शर्मा वृंदावन से और मुझे सॉन्ग सुनना है तेरी पलके जो झुकी बहुत दिन बाद, SMS की हूँ सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल आपके गाने प्ले करेंगे। आगे मैसेज कुछ है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अखिलेश यादव टुनटुन यादव, तो आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है क्या हाल है आप सभी दोस्तों को, सभी भाइयों एवं बहनों को सलाम बोल दीजिए, सॉन्ग सुनना है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए हैं कुछ याद रहा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम नहीं दिए हुए तो अपना नाम बताएं। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सर जी प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम। भूलिएगा मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज ओझवलिया औचका गांव प्रखंड से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज नमस्ते सोनू सर जी, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहाली पंजाब से और आज मेरा भी फरमाइश है सॉन्ग, तो बिल्कुल आपका भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते नमस्कार प्रणाम सोनू भैया सबको बोल दीजिएगा, मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से और मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा और काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश किए हुए भोजपुरी में, तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैसेज करते हैं हेलो सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से और हमको गाना सुनना है दिल से दिलबर कुमार शानू का, और कहते हैं कि गलत बात है, क्या सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, टाइम से SMS किए हैं, तो बिल्कुल बजेगा और आपसे भी पहले तो कोई मैसेज किया है तभी तो बज रहा है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, तो अपना परिचय दें फिर यदि आपकी फरमाइश होती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नंबर है 72 77 16 65 96। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और श्वेती शर्मा की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं उनकी फरमाइश के साथ इंजॉय करते हैं।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
11: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
4: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
3: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल,
4: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
3: जहां हर निवाला कहे वाह।

0: रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुनने आप सब, और छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और पुनः स्वागत है कार्यक्रम एसएमएस फरमाइश में। और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो आगे बढ़ेंगे और आगे मैसेज हम शामिल करेंगे। और एक हमारे श्रोतागण हैं जो कॉल कर रहे हैं, तो कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज। यदि मैसेज करेंगे तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंचती है, तो पूरा करने की कोशिश रहेगा आपकी फरमाइश। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सुनो भैया, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल के बाज़ार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए मोहब्बत तो सूरत नहीं देखी जाती, एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, पसंद हो चीज़ तो कीमत नहीं देखी जाती। सुपर सॉन्ग। और मैसेज करती हैं निशा भारती और कहती हैं कि सीट खाली है तो बताइएगा जरा। सीट तो आज खाली नहीं है क्योंकि कई सुरतागढ़ की फरमाइश पहुंची है। और आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे, और इस गाने के फरमाइश करते हैं दिलीप कुमार ठाकुर जी मिर्ज़ापुर टू मोहाली पंजाब से। और गाने के फरमाइश करते हैं भोजपुरी में ही, और गाने का बोल देते हैं नासा छोड़वा की ना हो कृति उपाध्याय की आवाज़ में। तो चलिए इनके गाने हम सुनते हैं और आप सब भी सुनिए। और भी मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है दो, और लिखा गया है कि सर हमको नींद लग रहा है, जल्दी सुना दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा और सब्र कर ले सरोज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो कैसे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, निशा शुक्लवा से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैसेज करते हैं रोहित जी, और तो आप मैसेज करके डिलीट क्यों कर दिए। रोहित जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, फ़िलहाल बन रहे हैं आप। और फिर आगे बढ़ते हैं, हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।
1: मई
2: का हो का कहा तारा
1: हमारा की 500 रुपया दे।
2: 500 रुपया? ये तो 500 रुपया का करब,
1: हम कुछ गब ऐसे दूसरे, मतलब हमके 500 चाहिए तो चाहिए।
2: एकर मतलब कि तू गांव के लोग के संगे फिर पिए वाला धंधा अपना ले ले बाड़ा, का चाहत रह? गाड़ी बेचला, गहना बेचला, अब हमरा के बेचल चाहत रह?

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: रेडियो एमसीएम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और अभी गाने सुन रहे थे हम सभी सफरोज अली जी की। और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे दिलों की दवा मिलती है, बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, मैसेज थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, और चलिए बन रहे हमारे साथ, और आगे कई मैसेज पहुँचे तो आगे भी मैसेज शामिल किया जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर पूरा गाना सुनाइएगा, बहुत इंतज़ार किए हैं, तो चलिए पूरे गाने ही सुना दिए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सभी दोस्तों को मेरा गाना पसंद करने के लिए दिल से धन्यवाद, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी, और कहते हैं कि गुड नाइट भैया, चलिए आपको भी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर मेरा नहीं बजेगा क्या, तो चलिए आपकी बजाते हैं। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले कौन है, आप अपने परिचय तो दे, और जिसके कारण परिचय नहीं देने के कारण ही आपकी मैसेज रुकी हुई है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, दिल उसे दो जो सूरत नहीं दिल से अच्छा हो। सुपर सॉन्ग, वेरी नाइस, और मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और शिव सागर जी की, और गाने का बोल देते हैं, रूपवा सलोना ये धनिया हो, मन करे निहारत रहे। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 FM पर।

कमाल का शौक रेडियो रेमशियम 90.4 एफएम पे सुन रहे थे हम सभी काफी प्यारा और आगे मिसेस कुछ पहुंचा हुआ है देखा जाए आगे मिसेस पहुंचा हुआ लिखा गया है कि भोजपुरी अंदाज में मस्त सॉन्ग मिसेस करती हैं निशा निशा भारती और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद साथ में गुनगुनाने के लिए भैया चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमशियम सुनने के लिए और प्यारे से गाने की फरमाइश करने के लिए और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़ और इस मैसेज को पहुंचाने वाले तो आपकी फरमाइश हम तो बता ही दिए हैं कि नहीं सुना सकते हैं और आपसे भी पहले कई श्रोतागण मैसेज किए हुए हैं और वो भी अपने गाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हीरा पाकड़ से अखिलेश यादव एंड टुंटन यादव तो आप दोनों की हमने स्वागत कर ही चुके हैं जो गाने के फरमाइश रहती है तो पूरा करने की कोशिश रहता है लेकिन आप दोनों के द्वारा कोई गाने का फरमाइश नहीं किया गया है तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय सर समीर आलम जंगलिया से और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में क्या हाल है आगे बढ़े यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं अभी इनकी तरफ से गाने का फरमाइश किया गया है लेकिन नाम नहीं बताया गया है और पीछे के मैसेज देखा जाए तो इसमें नाम आया हुआ है लाडली नवादा से और आज के मैसेज में कोई नाम नहीं है और गाने की फरमाइश किया गया है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा और सबसे पहले और सुनने वाले सभी को सुनाना चाहती हैं तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इंजॉय करते हैं हम सभी आपके गाने के साथ रेडियो रेमशियम 90.4 एफएम पे

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: MC94 FM सुन रहे हैं हम सब, और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं, और कई तो हम मैसेज शामिल नहीं कर सकते हैं और ना ही गाने के फरमाइश पूरी कर सकते हैं। आगे जो भी मैसेज आ रहे हैं, आगे मैसेज देखा जाए, और लिखा गया है कि सना भैया, जे दिन के शो क्यों नहीं चलते हैं? सोनी जी कहाँ चली गई? तो फिलहाल छुट्टी पे हैं, और जैसे पहुँचती वैसे कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मत करो प्यार जो पा ना सको, मत करो प्यार जो पा ना सको, मत करो जो वादा निभा ना सको। अरे इस दुनिया में किसका प्यार पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, तेरे दर्द से दिल का आबाद रहा। मस्त दर्द भरा सॉन्ग और मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं अनीस कुमार गोपालगंज से, और मुझे गाना सुनना है, और गाने का बोल देते हैं दैया दैया दैया, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं रेडियो रमझम सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए इनके फरमाइश हम प्ले करते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और जो भी श्रोतागण छूट गए हैं, नाराज नहीं होना है, समय होते तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। देख रहे हैं कि कार्यक्रम समाप्ति के समय से आगे हम चल रहे हैं, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
10: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: तू जो है।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9186664498 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: हे रास्कल, यू नॉटी बॉय।
9: यस मी,
8: आई लव यू।
9: आई नो गर्ल।
8: Rascal.
9: Uh-huh.
8: Show me a big, big mask.
9: Woo! You get naughty now.

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
4: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
2: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
2: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
2: जहां हर निवाला कहे वाह।
5: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9106264498 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
0: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठा। अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
0: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: तू जो है,
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण। समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है।
1: गुजरात टाइटंस टू टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स इन अहमदाबाद दिस इवनिंग एंड विद दैट वी एंड द मिड डे न्यूज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
4: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
2: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नेनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
5: It is ironic that Pakistan, with its long time,
6: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
5: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने यह बात कही।
7: India has recently launched भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
8: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
7: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
6: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
9: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
10: चाय, ये चाय।
11: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नवे पर दे दो।
1: का?
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894 18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97070657575।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: कोशिश बा कि ना हो खो, बट आगे के पता नहीं।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करे 85070-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903-69015 पे।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

समय केहू के छोड़ले नहीं के भैया, जे भी आयल बा ओकरा एक दिन जाए के पड़ल बा, के कैसे गइल बा ई मालूम नहीं खे। आई समय के फेर में कैसे समय धके दबोचता, सुनिए कहानी में।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है

0: एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिंजन 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
7: अरे कहाँ है जिया दुखौला,

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: मैडम
2: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना। और
1: अभी नाम नहीं पहचान में आया मेरा।
2: क्या साथ मास्टर धनाव से?
1: जी धनाव से।
2: जी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर।
1: पहला कॉल लगाए ना?
2: जी जी।
1: हाँ, अभी ट्राई किए, देखे 11 बजे तो लगाए तो मैं बंद बचा, फिर दोबारा किए तो लग गए। और सब सुनाइए क्या हाल चाल है?
2: सब बढ़िया, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल?
1: अभी गेहूँ तो कट रहा है हम लोग का तरफ, कल परसों हम लोग का भी कट गया।
2: अच्छा, आपका भी फाइनल हुआ कि नहीं?
1: हाँ, हार्वेस्टर से कट गया है। कि
2: चलिए बढ़िया, मशीन से?
1: हाँ, हार्वेस्टर से। काम लगन का काम चल रहा था, हाथ से कटाएगा धान भी कट जाता है हार्वेस्टर से, गेहूँ भी।
2: अब इधर काम उसमें करेंगे तो फिर अपना काम तो नहीं होगा ना, दुकान वाला सिलाई
1: लगन का काम चल रहा है।
2: तो इधर भी भीड़ है तो मशीन से ही सही है, कटवा दीजिए।
1: ठीक। और हमको कहना है कि आपका जो रिमझिम का मालिक है, जो सर भी है, जो यार बोस में गाना चलता है, जो गाना जब वेटी पर आता है ना असली मोड़ पर, तो वही सब कट कर दिया जा रहा है।
2: ये
1: दो बार हुआ है, दो तीन बार हम सुनते सुनते उनके पास आए, जो गाना असली मोड़ पे चलता है आपने, तो वही से कट कर देंगे।
2: अब ये आप उन्हीं से बोलिए ना, संदेश मिला में कहिए।
1: हाँ हाँ, संदेश मिला होता है रविवार को।
2: जी रविवार को होता है, लेकिन आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं उसमें।
1: अच्छा, उस वाला नंबर पर?
2: 21 वाला तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर है।
1: हाँ हाँ हाँ, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का
2: नहीं, आपको संदेश मिला इसी जो नंबर पे व्हाट्सएप शो करते हैं ना योर वॉइस, उसी पे आप अपना संदेश मिला व्हाट्सएप कर सकते हैं।
1: जी
2: नहीं तो ईमेल कर सकते हैं।
1: जी
2: जी, तो कभी भी आप भेज दीजिएगा, संडे को उसका प्रसारण होता है।
1: संडे का ना 7:30 से ना
2: 7:45 से
1: शाम में
2: और सुबह में भी होता है 7 बजे से शायद उसका प्रसारण रिपीट है।
1: सुनते हैं।
2: तो उस दिन आपका उसका प्रसारण होता है, पूरा 1 सप्ताह में जितना आया होता है।
1: आज तो यार बस चलेगा।
2: हाँ आज चलेगा, रिकॉर्डिंग फाइनल होने के बाद।
1: जिगर मूवी का गाना है, मोहब्बत है खुशबू, मोहब्बत है लहरा, मोहब्बत से कैसे बिछाएगा पहरा।
2: जी जी
1: जी, 8:30 का गाना है। और सारे रेडियो का डेलीगेट रहेगा और आपको भी, और में काम करते हैं आपका प्रोग्राम तो सुनते रहते हैं हम लोग।
2: जी जी, चलिए तो फिर ठीक है।
1: ठीक है मैडम, हम लोग भी काम कर रहे हैं अपना, आपका प्रोग्राम चल रहा है।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मैं इसमें कॉल।
1: चलिए धन्यवाद।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: नमस्ते मैम।
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टेंशन 90.4 FM में।
15: बताइए।
16: सब बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: हम भी सही हैं।
16: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको रवि जी?
15: वो जो कौन सी के नया गाना नहीं आया है, नाम लिख दो सजाने वाले सरिया पे, वही वाला सुनाइए यार।
16: जी और सुनवाना भी है?
15: इन्हीं को जी, यही सुनवाना है, सुनवाना है।
16: तो आज छुट्टी में है कि ड्यूटी में है?
15: आती हूँ।
16: बढ़िया, तो प्ले करे गाना?
15: हाँ थोड़ी आराम कर लिए, समय हरदम तो डुबती जाना था।
16: प्ले कर रहे हैं गाना आप ही?
15: हाँ करिए।
16: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 104 FM में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
1: जी क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम रेडियो रिमझिम सुनते हुए मैम, और सोचे टाइम हो गया, फोन भी लगाते, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है
0: जी? आज हमको सुनवा दीजिएगा, कितने फिल्म है कितना दूर कितना पास का सुनवा दीजिएगा, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते मैम।
1: जी कितना दूर कितना पास का टाइटल सॉन्ग?
0: जी जी, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: ओके चलिए तो प्ले करे गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87 8 94 18 7 44।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हाँ नमस्ते मैम।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: थैंक यू मैम, मैं राजेंद्र कुमार जोधिया जिला हिमाचल मंडी से बोल रहा हूँ।
14: क्या हाल चाल है?
13: बढ़िया बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे?
14: मैं भी बढ़िया हूँ, क्या हो रहा था?
13: बस ऐसे ड्यूटी आए थे काम पर, काम चालू करवा दिए हैं, बस आपके प्रोग्राम सुन रहे थे, बस मिला रहे थे 11 बजे से, तो लग नहीं रहा था अभी पता लगा मैसेज आया तो पता लगे चालू हो गए रिकॉर्डिंग, तो मैंने फिर ट्राई करना शुरू कर दिया। आज लग गई कॉल हमारी।
14: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है?
13: आज हमें सुना दीजिए नाम मूवी का, कई दिनों के बाद वतन की चिट्ठी आई
14: जी, और सुनवाना भी है।
13: हाँ, हमारे अपने ऑनर हैं

0: 5-12-11-001 एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: Now pick your phone up.
10: Hello?
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello?
9: Now pick your phone up.
11: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8002994911। जी हाँ, 8002994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: मैम नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: जी मैम, शैलेश कुमार बाराबंकी से।
13: जी क्या हाल चाल है शैलेश जी?
12: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
13: हम भी बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
12: आज गाना सुनवा दीजिए साजन मूवी का, ये तो जिए कैसे बिना।
13: जी और सुनवाना भी है?
12: हाँ सुनवाना है अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को, आपको, तमाम रेडियो रिमझिम सुनने वाले को और तमाम उन लोगों को जो किसी के बगैर नहीं।
13: जी तो प्ले करें गाना आपकी।
12: ओके मैम
13: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय चॉइस कॉल किए।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमी 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: रामा जी प्रसाद छावर से
1: जी। क्या हाल चाल बा रामा जी?
0: हाल चाल तो अपना पसंदा छूट लगा गर्मी भर भर क्या कहा जाओ। आप तो बुझा के ए सी लगवा पूरे घर में ना, तो पंखा से गर्म हवा निकला था।
1: जी तो लगवा ली ए सी, क्या दिक्कत बा?
0: गाना सुने बा गर्मी वाला। ठीक है, दोपहरिया में गोरावा जरेला, रामा गोरावा जरेला, तनी हमके गोलिया ल उठाए मोरे मिटवा
1: जी।
0: हाँ, सुने खातिर जितना लोग सुनता सब कुछ सुनी, हम सुने रहुआ मन सुने।
1: ठीक बा, चलिए ठीक बा। तो
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
11: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
11: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
12: Now pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
12: Pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
14: Jab phone din pe bajti hai to kehte hai hello.
13: Hello, hello, hello, hello, hello.
14: Bhage bhage phirte hai.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग नगर समाचार FM में।
17: नमस्ते,
16: नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
17: वीर बहादुर चौहान
16: जी। कैसे हैं वीर बहादुर जी?
17: ठीक है जी मैम
16: जी। तो क्या हाल चाल है?
17: अपना सब सुनाइए।
16: मेरा भी बढ़िया है,
17: आज रूम में तो बैठे हैं छुट्टी मार कर ड्यूटी में गया थोड़ा जो अंगूठा है ना अंगूठा का जो बीच है ना उसमें तो थोड़ा कट गया
16: जी
17: इसलिए रूम पर बैठे हैं दवाई करा रहे हैं।
16: चलिए तो अभी ठीक है ना?
17: अभी ठीक है। सॉन्ग सुना दीजिएगा पवन सिंह का व्यवसायी वाला।
16: पवन सिंह का व्यवसायी वाला गाना
17: ऐसे तो इसे टूट गया जोड़ी सही गाना
16: है
17: सुना दीजिए।
16: जी बिल्कुल तो प्ले करें गाना आपके।
17: हाँ मैम
16: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये नारे फैम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
2: जी वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: कैसी है, उम्मीद है कि अच्छी होंगी।
2: जी जी बिल्कुल बढ़िया है।
1: जी मैम, बहुत देर से हम ट्राई कर रहे थे, एक घंटे से लग ही नहीं रहा।
2: ये अभी लग गया है ना।
1: जी मैम, जी मैम मुझे गाना सुनना है।
2: बिल्कुल सुनाएंगे, गाना बता दीजिए नाम गाने का।
1: मुझे गाना सुनना है मत पूछ मेरे महबूब सलाम।
2: जी और सुनाना भी है
1: आप स्पेशली सभी सुनने वाले को।
2: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आपके।
1: मैम एक बात,
2: जी जी
1: ये टाइमली नहीं बज पाता है।
2: टाइमली बजता है, 5 से 7 के बीच में कभी भी आएगा।
1: तो उसका कोई टाइम नहीं रहेगा, मतलब कि हम कब सुनेंगे तो कब पता चलेगा।
2: 5 से 7 के बीच में कभी भी आ जाएगा।
1: उसका कोई हिंट नहीं होता है मैम? उसका कोई हिंट नहीं होता है?
2: कोई हिंट मतलब?
1: मतलब कैसे इस टाइम में सुनेंगे तो हमारा बजेगा।
2: तो बोल तो रहे हैं शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ जाएगा। पहला कॉल आपका होगा या लास्ट कॉल आपका होगा ये नहीं बता सकते।
1: यही तो पूछ रहे थे मैम। ठीक है, थैंक यू।
2: जी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो मैं जो इसमें कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कन्हैया दास, सरहार से।
1: ठीक, कैसे हैं कन्हैया जी?
0: बस ठीक है, अपना सुनाइए।
1: अभी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था?
0: बस इधर है, काम है, कटनी लगा हुआ है। वही क्या करेंगे इस टाइम।
1: अभी तो कटनी पिटनी का ही टाइम है।
0: हाँ,
1: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना कल तो हमने भेजा था, वो बजबे नहीं किया। वही जो नथिया गढ़ैला उधार का है,
1: उधार सिंह जी है ना?
0: हाँ जी
1: जी। और सुनवाना भी है गाना?
0: हाँ, यहीं पे है, हमारे सब बंदे।
1: चलिए,
0: पांच छह आदमी है, सुभाष है और भोला है।
1: तो प्ले करे गाना
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका माय चॉइस में कॉल की।

एकरा में राजन भैया मरद लोग के दोस्त नहीं थे। जब गाना नहीं खेल गढ़ल रहा और जब उनका भी पैसा नहीं करा था मेरा भी पैसा उतर के पाल जाने इमोशनली ब्लैकमेल करा था गाना खाती या कैसे कहा था।

जब भी हम सब सवर के अपना सखी लोग के साथ बाजारे जाइला आ जब भी वो देखेला तो सबके सामने हमरा के टोके लागेला तातना सजल सवरल के का फायदा कि लोग कहेला कर्जा कार के बने ले बाबू तारा ढेर पता बा सची सवर के हमारे मुश्किल

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: सीताराम सोनी जी, हम एम एस कुमार शर्मा बोल रहे हैं जिगना से।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी कुछ 11 बजे से ट्राई करते हैं पर लगभग कहीं नहीं मिल रहा था, लग ही नहीं रहा।
2: अभी लग गया ना?
1: जी अभी तो लगा। जी लास्ट में कॉल लगा हुआ है तो गाना बज जाएगा ना मेरा?
2: जी बिल्कुल बजेगा, कहीं नहीं बजेगा।
1: जी जो शो चल रहा है और चॉइस बोर्डकास्ट में उसमें कॉल का माध्यम बंद कर दिया गया है क्या?
2: नहीं ऐसा तो बात नहीं है, कॉल का माध्यम चालू है।
1: कॉल किए थे तो सनी सर उठाए थे, बोले थे कि व्हाट्सएप पर कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कॉल पे बात नहीं हो पाएगा, उस नंबर से तो बात नहीं होता, वो उठाए थे सोनू जी।
2: तो आप किस टाइम कॉल किए थे कि सोनू जी रिसीव किए थे? वो तो देखे नहीं है।
1: योर वॉइस चल रहा था तो हम रेडियो से सुन कर उसके बाद कॉल किए।
2: पता नहीं आप किस टाइम, सोनू जी तो रहते नहीं है जब शो चलता है तो।
1: जी जी
2: जी, क्योंकि सोनू जी हम यहाँ आते हैं उससे पहले ही चले जाते हैं, उनका एग्जिट टाइम 9 बजे का है, वो 9 बजे निकल जाते हैं, नाइट में रहते हैं।
1: जी
2: जी, तो हो सकता है कि आपका नंबर कहीं और कनेक्ट हो गया होगा।
1: हो सकता है
2: क्योंकि अभी ऐसे काफी टाइम, काफी बार होता है कि कनेक्ट हो जाता है, कहीं और लगा और कहीं और चला जाता है।
1: जी जी
2: जी, तो हो सकता है लेकिन बंद नहीं हुआ है, चालू है।
1: जी हमको गाना सुनना है। गाना सुनना है जो खेसारी लाल का नहीं है, बालमा बिहार वाला, यही टाइटल सॉन्ग सुनना है।
2: और सुनवाना भी है?
1: जी करवैया से है मनोज भैया और छोटपुर से है अनिल भैया और हमारे ही करीब का है जो तप भैया और कलर है बिपिन मास्टर और राजदेव जी और रामकृत जी और आप जितना सुनने वाले हैं सब लोग का।
2: जी तो प्ले करे गाना।
1: जी, जी
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
0: जी नमस्कार नमस्कार, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोणा मन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साह।
1: जी क्या हाल चाल है?
0: जी मेरा हाल चाल एकदम बढ़िया है। अपना सुनाए, आप कैसी है? आपकी पूरी होल टीम कैसे है?
1: जी सब कुछ बढ़िया है और टीम भी बढ़िया है। आप बताइए, आपके घर परिवार सब लोग कैसे हैं?
0: एकदम सब घर परिवार ठीक है, हम भी ठीक है, अच्छे हैं। आपसे बात कर रहे हैं, अभी अपना रूम में बैठे हैं, सोचे थोड़ा आपसे बात कर लिया जाए। ढेर दिन हो गया बात होता हुआ
1: जी,
0: तो हम सोचे थोड़ा आपसे बात किया जाए, अपना फरमाइश बताए, अपना मनोरंजन करे।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनना है?
0: और सब उधर का मौसम बताइए, उधर का मौसम क्या है?
1: इधर का मौसम बिल्कुल बढ़िया है।
0: चलिए इधर भी उसे ही है।
1: जी जी, तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
0: आज गाना सुना दीजिए, कहिए ना कि सबसे तो पहले हम कहेंगे क्या कि एक महान गायिका है, उनका निधन हुआ था काल परसों काल, आज तो उनका अंतिम दाह संस्कार है। इसके लिए कहिए ना जो बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारे वैसे उनका घर परिवार में, कहिए ना जो शक्ति प्रदान करे, सहनशीलता हुए उनका परिवार में। कहने के मतलब क्या है कि जो उन्हें के ऊपर कोई गाना हो तो बजाइए, वो गाना है दिल का चीज है ये जान लीजिए, बस एक बार कहा मान लीजिए।
1: और सुनाना भी है गाना?
0: सबसे पहले आपको सुनाएंगे, आपको रेडियो होल टीम रंजन संपूर्ण परिवार को
1: जी,
0: और दोस्त में हो गया सकाना से मोहम्मद साबी जी, गमर से उत्तम कुमार जी, राम लक्ष कुशवाहा जी, कृति लगा से अर्जुन कुमार अकेला बैकुड़ से, नरेश सोनी, नसीरुद्दीन खान, दीपक दास, उदय भान ठाकरे, जुना साहब, धर्मेंद्र यादव रूप में थोन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, चंपन राम भैरव गंजी, शंकर प्रसाद कम्बू, परसनाथ कुशवाहा, परस शर्मा, राजेंद्र यादव भारती, संतलाल गौतम, उत्तर प्रदेश मऊ से, आम आदमी नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्त, विशेष करके रंजीत से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण पर्व, खास करके मौजवलिया को सलाह जानकारी है उसको सुनाते हुए, अभी रामचंद्र मुखिया जी के सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें जो इसमें कॉल किया।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9932131308.
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494911। जी हाँ, 80029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्ते दीदी।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: नेहा बोल रहे हैं मैं
11: जी। क्या हाल चाल है नेहा जी?
10: अपना
11: हमारा भी बढ़िया है।
10: नाश्ता पानी हो गया? चलिए ठीक है।
11: ये आपका हो गया है
10: जी?
11: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
10: गाना सुनना है जाते हैं पर देखती है, जाते हैं खत लिखो।
11: अच्छा, और सुनवाना भी है
10: आपको? जितना रेडियो रिमझिम दोस्त
11: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना
10: जी। दीदी नमस्ते।
11: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99 55 94 94 53
3: और 90 97 61 60 02।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 53 69 015 पे।
9: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
12: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
13: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
13: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
14: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
12: कहाँ पर?
14: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
12: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
14: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
12: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569655।
15: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान, यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी, लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

0: अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और पूरी पार्टी की आवाज में एमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के सौजन्य से एक और बिरहा का प्रस्तुति बा। छवि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार को बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। उस धमाके से पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश दहल गया बाबूजी, और कितने बेगुनाह लोग मारे गए। आखिर क्या कसूर था उन लोगों का? वो लोग तो कोई अपने रोटी रोजी के लिए वहां था, कोई कुछ खरीदने के लिए गया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये हमारी आखिरी लोगों से और परिवार की मुलाकात होगी। ए बाबू, तो सबसे पहले उस घटना में मरे हुए लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है, और कवि की यह लाइन संकेत कर रही है कि आखिरकार यह देश कहां जा रहा है। नेता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में खाली खिंचातान चलत हो, देश का केहू के ख्याल कैसे कैसे लोग सत्ताधारी जो हमारे देश पर आज राज कर रहे हैं, ये नहीं पता है कि देश में हो क्या रहा है, केवल वो अपने में मशगूल हैं। तो कबीर जी ने भाव लिखा है भूमिका में, जरा गौर करिएगा।
1: तू बुरा मैं सही हो रगा बस यही, होती कुर्सी के खातिर ये तकरार

वार दुश्मन ने दिल पर किया देश के राजधानी वतन की सिसकने लगी दस नवंबर को

ये जो सत्ताधारी लोग हैं यही हमारे और आपके बीच में आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं, झूठा वादा करके, और जब सत्ता में आते हैं तो ये अपने आप में मशगूल हो जाते हैं। ये नहीं मालूम है कि देश किधर जा रहा है। कभी जी बिरहा के अंदर एक लाइन, ये गजल का अंदाज ध्यान मस्तर।

चले थे ये हमारे नेता लोग देश को संवार रहे, लेकिन हमारे देश की जो धरोहर थी उसको लीज पर इन्होंने दे दिया। बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने वादा किया लेकिन सारे वादा पे विफल रहे। यही से कहानी की शुरुआत हो गई।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया जिसके संविधान पर आज यह देश चल रहा है, लेकिन वह पाकिस्तान की मंसूबा क्या

0: जो भारत की राजधानी दिल्ली है। ए भैया
1: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
1: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: वही दिल्ली नगर में छोटा सा इलाका अमरपुर बताया गया बाबू जी, वही के रहे वाला जिकर नाम ब्रिजराज बतावल गई। पति पत्नी के साथ में बाबू जी मालिक संतान के रूप में, औलाद के रूप में तीन गो बिटिया एक बेटवा देलन। जोने में बड़ा बेटा, जोने बेटवा का नाम बड़ा प्यार दुलार के साथ लोग शिवम रख ले रहलन। गरीबी चरम सीमा पर बा ब्रिजराज ऑटो रिक्शा चला करके बाबूजी और परिवार के जीविका चला रहल बाड़न। धीरे धीरे इस शिवम जोन बा जब कक्षा पांचवी के क्लास का पढ़ाई जब करे लगल ए बाबू, इसके बाद आठवीं पास कैले जब इंटर में पहुंचल बा ए भैया, पढ़ने में बड़ा हो नहा रहे लेकिन परिवार का खर्चा लंबा रहल। पिताजी मेहनत मजूरी करके पैसा लिया में परिवार का खर्चा चले, लेकिन यह शिवम यही सोच रहा था कि अगर व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो हम पढ़ लिख के अपने परिवार का गरीबी जरूर दूर कर दे। लेकिन भैया बाबू हो, एगो गरीब का दुख एगो गरीब ही जान सकेला। यहाँ एक लाइन कर्ज लागल मास्टर,

आकर के चाय की दुकान पर चाय बेचता था, जो पैसा पाता था कुछ परिवार और कुछ पैसा वो फीस ले जाकर के जमा करता था। अब तो धीरे धीरे पिताजी भी सोच गए कि हमार बेटा अब लगता कि हमार सहारा हो जाए। इतने में

ए भैया धीरे धीरे समय बीत रहल बा, गरीबी में लोग दिन काट रहल बाड़न ए बाबू, ए भैया। लेकिन इतने में मालिक नजर टेढ़ हो गई। ए भैया शिवम के माता जी के गंभीर बीमारी टीबी जैसन बीमारी रोग से ग्रसित भैली न, इधर उधर लेकर के बाबूजी इलाज के लिए भटक रहल बाड़न। जहां इलाज उनकर चल रहल बा, काफी अच्छा खासा पैसा भी लग रहल बा। ए बाबू लेकिन कवि जी तनी विदेशिया में भाव लिखलन है कि स्कूले में टापर

ए बाबू, शिवम इंटर की क्लास में अपने विद्यालय में अपने कक्षा में सबसे टॉप किया है बाबूजी। ए भैया जे भी आवे तो ब्रिजराज से लोग यह कहे कि तुहार बेटा पढ़े में बड़ा होनहार बा, तनी मेहनत कर देबा तो पढ़ी के नौकरी पाजी, तुहार गरीबी दूर हो जाई। ए भैया पिताजी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहल, लेकिन ए भैया अब तो धीरे धीरे तनी समय और आगे बढ़ल था

0: दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। श्री चौधरी ने पटना में पुलिस कर्मियों के परिवारों को बीमा राशि का चेक सौंपने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों से कहा कि आप ड्यूटी कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी।
1: बिहार में सुशासन और आपके बल पर सुशासन, बिहार की समृद्धि का भी रास्ता आप ही है, क्योंकि आप सुशासन देंगे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाए, और जब व्यवस्था खड़ी होगी तो उद्योग धंधे लगने लगे। सभी पुलिस वाले को कहा है यहाँ खून कर सुशासन स्थापित करने में सहयोग, और आपके परिवार आपके लोगों की चिंता सरकार करे।
0: श्री चौधरी ने कहा कि राज्य की समृद्धि के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हो, इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज श्रावणी मेला और बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई विभागों के मंत्री मौजूद थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विपक्ष के एक खास जाति को टारगेट बनाने के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जाति नहीं देखी जाती है।
2: प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करिए तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है।
0: मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को नए कुलपति के स्थायी नियुक्ति होने तक कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि प्रोफेसर दिलीप कुमार केसरी ने आज कार्यवाहक कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। लोक भवन ने राज्य के 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपति की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने TRE4 शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं ली जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है।
3: TRE4 के मामले में हम लगातार इस बात को रखते हैं। अब बिहार की जनता तरस रही, उम्र निकला जा रहा है, तैयारियों में इतना पैसा खर्च हुआ, लोग इतने मेहनत किए और परीक्षा नहीं होता, इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती है। इतने लोग पीड़ित हैं, सरकार वादा करके अगर मुखर जाती है नहीं कर पाती तो ये सरकार की फेलियर। परीक्षा
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट के लिए हाल ही में संपन्न उपचुनाव में राजद के नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आर्थिक अपराध इकाई EOU का विशेष सेल गठित किया गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह सेल विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेगा उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही अवैध वसूली की शिकायत, राजस्व कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को देखते हुए सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति कर दी है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। विभाग की ओर से बताया गया है कि सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रूपये से 1,00,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार मठ मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसकी रूपरेखा तय करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
1: देखिए, राजस्व विभाग ने धार्मिक न्यास परिषद के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि हम लोग राजस्व विभाग एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें धार्मिक न्यास परिषद के सभी सदस्य और उनके सचिव रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी रहेंगे और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद का लाखों एकड़ जमीन या तो मठ मंदिर का हो चाहे धार्मिक न्यास परिषद का हो, वो या तो अतिक्रमण के है या फिर आपसी विवाद में फंसा हुआ है। इसी के लिए राजस्व विभाग ये पहल करने जा रही है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी जमीन सुरक्षित रहें।
0: काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आंधी बारिश और वज्रपात की घटना में राज्य के अलग अलग भागों में 3 लोगों की मौत की खबर है। मधेपुरा के बिहारीगंज में वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से 1 किसान की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गया और नवादा जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अरवल, भोजपुर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है।
2: राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: बेगूसराय जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटी ऑक्सीडेंट मिंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: शेखपुरा की स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी छह भाइयों को शस्त्र अधिनियम के तहत 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के चकबंदी रोड में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शुरू हो गया है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत गंगटा पंचायत के सोनरवा गांव में ग्रामीणों ने नल जल योजना बंद होने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी ने बताया कि सोलर पैनल में गड़बड़ी के कारण समस्या हुई है, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जल प्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। सुपौल जिले के बीरपुर में सैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंग बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बाबू, सन 2020 में इलाज चल रहल बा, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आइल और उस परिवार को छोड़ करके शिवम की माँ इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। ए भैया, परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटल भाई। ए भैया, लेकिन तीनों बहन के वह भाई शिवम समझा रहल बा कि हम हई कौनो दिक्कत नहीं होके देव। ए बाबू, अब देखा या धीरे धीरे दिमाग काम कैलस। ए बाबू, एक कोचिंग सेंटर खोल देता है, वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है और अपने पढ़ भी रहा है। तब कि ट्यूशन पढ़ा के यापन, अरे खर्चा चलावे लगले, 2024 में

0: अब बढ़ गई बाबू कौन समाज में जतिया।
1: ए बाबू, शिवम के एगो सपना रहल कि हम बढ़िया से पढ़ के आ डॉक्टर बनब आ लोगन का सेवा कर। सन 2024 में बाबूजी अपने हर पढ़ाई को पढ़ते हुए और नीट का परीक्षा को वो निकाल लिया, MBBS में उसका चयन हुआ। आपको परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं भाई। ए बाबूजी, जहां लोग एक दुख से अभी उबर नहीं पाए थे तब तक मालिक ने ऐसी खुशी दिया कि शायद वह दुख लोग भूल सकें। ए भैया,

0: रोजी सिन्हा MBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 97665750।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 62052112 पे।
11: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
12: उनका पिताजी और CM एक ही जगह बैठल बड़न, तो पिताजी जब अपने बेटा के चेहरा पर और मुस्कान जब देखलन, तो हंस करके एक बात कह रहल बड़न, यहाँ एक लाइन तर्ज लागल मास्टर,

ए बाबू अब तो धीरे धीरे शिवम की ट्रेनिंग चल रही है उस दिल्ली की ही एम हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में। ए बाबू रोज घर से तैयार होकर के और जाते थे तैयारी करके और शाम को घर पर आते थे बाबूजी। ए भैया लेकिन यह 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार के सुबह में बाबूजी और घर से उस मेडिकल कॉलेज के तरफ चलन है। वहां गईलन बाबूजी और अपन दिन भर जो ट्रेनिंग रहल पढ़ाई रहल पूरा करने के बाद और वह शिवम शाम को वहां से जब छुट्टी होती है तो घर के तरफ चलाए। दो चार साथी रहलन और दिमाग में आई कि आज शिवम तोहरे के यहाँ पार्टी हुई। ए भैया वह शिवम कहता है कि कोई बात नहीं है चलिए हम लोग चलते हैं हमारे घर पर ही आज पार्टी होगी। अब वहां से निकला और चांदनी चौक के पास में पहुंचा कि यहीं से सब सामान लेकर के और घर पर चलेंगे और घर पर अपनी बहन को फोन लगाता है कि हमारे दोस्त लोग आएंगे और थोड़ा वही पार्टी होगी। फोन लगा के कह रहा है बा तो यहाँ एक लाइन कर्ज लागल मास्टर

आए भैया घर पर संदेशा दे करके और कहता है सारी तैयारियां तुम लोग करा, हम चांदनी चौक से और सामान लेके आवतनी। ए भैया वही लाल किला के बगल में गेट नंबर 1 पे चांदनी चौक पर वह शिवम अपने साथियों के साथ में पहुंचाए है बाबू। ए भैया जब वहां पहुंचा सामान खरीद रहल बा ए भैया, घड़ी धीरे धीरे लगभग 7 बज गई बा। ए भैया अब तो सामान लेकर के चलने ही वाला था, तब तक अचानक का भई टेरी में भाव लगल

वो आतंकी

दिल्ली दहल गई तब लगा वतन को चोट, आतंकी बम विस्फोट कर दिया। ए भैया, शाम 7 बजे और इतना तेज धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई बाबूजी, और वहां गाड़ियां धो धो करके जलने लगी, कुछ लोग जिंदा जलने लगी बाबूजी। वहां जो दुकान वाले थे बाबूजी, जो राहगीर थे, सब लोग वहां से और भाग भाग करके लोग जान बचा रहा बा। अजी वो चपेट में आई हो बाबू, धमाका इतना तेज रहल कि कुछ लोग कुछ दूरी पर जाके बाबूजी फेंकैलन हा। केहू का सर कट गईल, केहू का पैर कट गईल, केहू का सर धड़ अलग हो गईल, केहू इतना बुरी तरह चल गईल बा ए बाबू कि चेहरा का सिना ख्यात नहीं हो रहल बा। लेकिन कबीर जी तनी सरंगा में भाव लिखलन हा,

लोग चल रहे बारन कई वाहन और देखते ही देखते और बिल्कुल जल करके राख हो गए बाबूजी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि धमाका इतना तेज था जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ए भैया, इतने में यह खबर चारों तरफ लगल भाई बाबू। शासन प्रशासन के लोग वहां पहुंचलन हां।

0: ए भैया हॉस्पिटल में लोग भेज रहल बाड़न, डॉक्टर बारी बारी से चेकअप कर रहल बाड़न, कुछ लोगन के मृत घोषित कैलन बाबूजी, और कुछ लोगन का हालत नाजुक बा, जे हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जूझ रहल बा। ए भैया लेकिन इतने में खबर जब ब्रिजराज के लगल हो बाबूजी।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: हाय बेटा कह कर के धरती पर गिरला न बाबू, तीनों बहन रो रहल बाड़ी कि अरे मालिक, हमारे परिवार के एक ही सहारा हमार भाई, जवन हर समय यह कहतरलन कि अब तो हम नौकरी पा जाई, अब तो उनको शादी बढ़िया घरे करब, बहुत खर्च करब, लेकिन आज कुल खुशी हमन के ले लेला मालिक। ए भैया, पोस्टमार्टम के बाद जब लाश दरवाजे पहुंचल, तीनों बहनिया जाए के भाई का हाथ पकड़ करके और रो रो करके ओ भाई से कह रहे, का कहे मास्टर,

हे भैया तनी अखिया खोला न भैया, दिखा न पिताजी रो रो के बुरा हाल बा भैया, तनी ए भैया तनी देखा न ए भैया। ये लोग कहता कि भला दाख

हे भैया कहाँ चल गेला भैया, सावन में तोरे कलाई में राखी बांधत रही भैया, अब आखिर के करा कलाई में राखी बांधत जाइए, लोग समझा रहल बड़न

पिताजी एक तरफ बैठ के बस केवल आंख से आंसू चल रहल बा, लेकिन जब कफन लोग देहल ए बाबू अब तो पिताजी को पकड़ के लोग ले गेलन कि चलान अपने बेटा के अंतिम समय में कंधा तक कम से कम देदा। पिताजी जब गेलन वो बाबू ए भैया जब अपने बेटा का एक बार सूरत जब देखलन हो बाबू जी ओई पजर में बैठ के सर पर सहला रहल बारन और रो रो के कह रहल बन कि बेटा एहन आर समय कतला के पिताजी अब हमनी का गरीबी दूर हो जाई बेटा, लेकिन ए लाल आखिर इका कहिला ए पिताजी के बुढ़ाई के तनिको ख्याल नहीं कहिला, अपने तीनों बहन कर नहीं ख्याल कहिला बेटा, आखिर हमारी बुढ़ाई कौने किनारे लगी। पिताजी रो रो करके और उस मरे हुए अपने शिवम बेटा से कह रहल बड़न तो पापट में भाव लगल

0: बेटा एलान, एक बार कुछ अपने है पिताजी से कहा, रोज शाम कावत रला, हम ऑटो चला के आवत रली, आधा घंटा हमसे कुछ बात करत रलन बेटा। ए लाल आज काहे नहीं कुछ बोल रहल बड़ा, कि अखिया खोलाई रवा हमार, अबूढ़ा बाप पुकारे हो, अबो जल नैया डूब गईल, मर पहुचल ना किनारे हो, फफक फफक के रोवे आंसू कारा, हमरे बेटा हो, अकठी जिंदगी के करे मोर, सारे हमरे बेटा हो। ए बाबू सब लोग समझौलन हा, एकरे बाद लोग दाह संस्कार बदले की गईलन, दाह संस्कार भइल बा ए बाबू। लेकिन इधर कवि जी आला में भाव लिखलन देश के प्रति की, आखिर ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं जरूर बम धमाका, आतंकवाद और ये नक्सलवाद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहल बा कि ये लोग हावी हवन। आल्हा में कवि जी भाव लिखलन,
1: कि पुलवामा का घटना से

आखिर कहीं ना कहीं सवाल है, डॉक्टर उमर जो पुलवामा कश्मीर से आखिर दिल्ली पहुंचा कैसे? अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में 2923 केजी का वो आरडीएक्स विस्फोटक पदार्थ मिला। आखिर क्या हो रहा है देश में? कहां है हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे प्रशासन के लोग? आखिर ये क्या हो रहा है ए बाबूजी? लेकिन ये पाकिस्तान है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। रोज कहीं ना कहीं वहां घुसपैठ, कहीं उस बॉर्डर पे घुसपैठ, तो कहीं आतंकवादी हमला, कहीं नक्सलवादी हमला। लेकिन जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? जवान भी तो तैयार है कि अगर छूट मिल जाए तो हम लोग भरपूर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे ए भैया। लेकिन उस दिल्ली बम धमाके में जो हमें प्रमाण मिला पेपर के माध्यम से बाबूजी, 13 लोगों की मौतें हुई। अभी भी कुछ लोग जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं ए भैया। लेकिन अब दिखाए है कबीर जी बड़ा बढ़िया भाव खड़ी में लिखलन। अच्छे हमारे देश के प्रधानमंत्री बा, उसे ही हमारे सवाल बा, लोगन का सवाल है का?

खाली कुर्सी के भूख है, देश कहाँ जात बा एकर ख्याल ना है। लोगन का यह सवाल बा कि अगर देश संभाल नहीं पावत हुआ तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर उस लायक नहीं है। लास्ट लाइन लिखे फिल्म मास्टर गुरु बिहारी लगन देव की राम भेज उसे उधार

0: ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimchim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं।

0: समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, योग्य भारतीय नागरिकों से कुछ पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। कॉरपोरेट रिलेशन मैनेजर, ये है पद का नाम। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर एक है जो कि अनारक्षित है। वेतन होगा प्रति माह स्तर 10 के हिसाब से, और आवश्यक योग्यता और अनुभव की बात करें तो उनका 55% अंकों के साथ MBA या समकक्ष योग्यता आवश्यक है। प्लेसमेंट सेवाओं, करियर सेवाओं, B2B सेल्स, व्यवसाय विकास या कॉरपोरेट संबंधों में न्यूनतम उनका 6 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अभ्यर्थियों को इस पद के लिए तभी विचार उन पर किया जाएगा, और आयु सीमा की बात करें तो 50 वर्ष है। सहायक प्रबंधक कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय के लिए एक पद यहाँ पर रिक्त है और ये अनारक्षित है। वेतन की बात करें तो प्रति माह वेतन स्तर 8 के समकक्ष समेकित वेतन उन्हें प्राप्त होगा। आवश्यक योग्यता एवं अनुभव में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ MBA या समकक्ष योग्यता, 50 वर्ष इनकी अधिकतम आयु सीमा है। वरिष्ठ सहयोगी कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय के लिए एक पद अनारक्षित है। 65,000 उन्हें प्रति माह समेकित वेतन मिलेगा। आवश्यक योग्यता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर या समकक्ष योग्यता। किसी शैक्षणिक संस्थान के प्लेसमेंट कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय में 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव या फिर सेल्स मार्केटिंग क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। इनकी आयु सीमा होगी 45 वर्ष। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, एक यहाँ पर पद रिक्त है जो कि अनारक्षित है। 65,000 रूपए इन्हें प्रति माह समेकित वेतन मिलेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil MA अभ्यर्थी का क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI में वैध एवं वर्तमान पंजीकरण होना आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्व में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो तो अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर भी आयु सीमा है 50 वर्ष। वेतन स्तर 8 एवं उससे ऊपर के पदों के लिए संस्थान की नीति के अनुसार समूह चिकित्सा बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 25 मई 2026 शाम 5 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, यहाँ पर प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। IIAC नई दिल्ली संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय नागरिकों से पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति आधार पर कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर सहायक रजिस्ट्रार, यह है पद का नाम। पदों की संख्या एक है। वेतनमान होगा 7वें CPC के अनुसार Level 9। सहायक रजिस्ट्रार लेखा, ये भी एक पद यहाँ पर रिक्त है Pay Level 9 के अंतर्गत। निजी सचिव, पद की संख्या 4 है यहाँ, Pay Level 8 के अंतर्गत ये आते हैं। और सहायक अनुभाग अधिकारी लेखा, एक पद यहाँ रिक्त है Pay Level 7 के अंतर्गत ये आते हैं। योग्यता, अनुभव और अन्य नियमों एवं शर्तों का विवरण आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट पर www.indiaiac.org। यहाँ पर समस्त जानकारी उपलब्ध है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण, प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक के एक पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक के पद के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है 29 जून 2026, पात्रता मापदंड वगैरह की जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार चाहें तो वेबसाइट देख सकते हैं जो कि है www.mumbaiport.gov.in peopleandcareer/jobs। यहाँ पर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ऑनलाइन एप्लीकेशंस देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
4: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: ठक ठक।
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
17: अच्छा मिला ही नहीं।
16: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
18: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
16: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
18: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
17: क्यों, क्या हुआ है?
16: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
16: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
18: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आठवीं क्लास तक के सभी विद्यालय को जिला पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया बंद। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी ने बैलगाड़ी से किया विरोध प्रदर्शन। बाल विकास परियोजना को लेकर की गई बैठक। मेडिकल स्टोर के एक लाइसेंस को प्रशासन ने किया रद्द। और पानी में डूबने से हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के आठवीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई को फिलहाल बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सभी स्कूलों में आठवीं क्लास तक के कक्षा का संचालन 26 तारीख तक नहीं हो सकेगा। हालांकि आठवीं से ऊपर तक के सभी क्लास सुबह 11 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। जिला पदाधिकारी ने इस गर्मी के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश जारी किया है। इसके बाद से 26 मई तक जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालय में कक्षा 8वीं तक के नीचे के सभी क्लास को स्थगित किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में महंगाई को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हाथों में तख्ती लेकर सरकार का विरोध किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बेतहाशा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों तथा नीट पेपर लीक के विरोध में यह हल्ला बोल प्रदर्शन आयोजित किया गया है। पूरे शहर में घूमते हुए पार्टी के नेताओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इधर बाल विकास परियोजना कार्यालय विजयीपुर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका और तमाम संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इसमें पोषण ट्रैकर अंतर्गत ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार सुयोग्य लाभुकों का एंट्री, महिला पर्यवेक्षिका स्तर से लंबित आवेदनों का निष्पादन, वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करना जिसके द्वारा शून्य आवेदन का एंट्री किया गया है उन सभी केंद्रों पर एंट्री कराना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में लाभुकों का पंजीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। शहर के बंजारी चौक स्थित मुमताज मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 34 दिनों तक चली गहन जांच के बाद विभाग ने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर तक नशीली दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित भालोटिया मार्केट से की जा रही थी। छापेमारी में बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। ड्रग विभाग की जांच में सामने आया है कि दुकान से बरामद करीब 20 लाख रुपए मूल्य की दवाओं की खरीद से संबंधित जो रसीदें विभाग को उपलब्ध कराई गई थी वह जाली मिली हैं। इसके आधार पर विभाग ने नशीली दवाओं की सप्लाई और इसके गड़बड़ झाला को लेकर कार्रवाई करते हुए फिलहाल दुकान को सील कर उनके लाइसेंस को रद्द किया गया है और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, इसी दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है। वहीं इस मामले में मृतक के साथ गए उसके दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिलहाल इस मामले को लेकर आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में खबर लिखने तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। इस हादसे में मृत युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पसरमा गांव के दिलीप उपाध्याय के 16 वर्षीय पुत्र अमन उपाध्याय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आवश्यक पूछताछ की जा रही है। HIV से संक्रमित व्यक्तियों की मिशन मूड में अब सक्रिय टीबी की पहचान, जांच और उपचार इत्यादि की जाएगी। इसके लिए एआरटी सेंटर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की टीबी की स्क्रीनिंग होगी। कार्यपालक निदेशक ने इसके लिए पत्र जारी कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक निर्देश दिया है। इसमें सभी टीबी रोगियों की भी एचआईवी की जांच की जाएगी और एचआईवी पीड़ितों की भी टीबी की जांच की जाएगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुल 55 मामलों में अलग अलग जगहों से पकड़े 3,379 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को आज नष्ट करते हुए जमींदोज कर दिया। इसके लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात थे और जेसीबी मशीन से कुचलकर बलथरी चेक पोस्ट पर शराब को दफन किया गया। इधर श्रम विभाग के धावा दल ने 3 जगहों पर छापेमारी की और 3 बाल श्रमिकों को भी मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि पहली कार्रवाई जमुना बाजार के हैप्पी स्वीट एवं चाट कॉर्नर में हुई। यहां एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया। दूसरी कार्रवाई कोनवा मोड़ पर पूजा स्वीट में हुई और तीसरी कार्रवाई अपना मिष्ठान भंडार माझा नहर के पास हुई। कुल 3 बाल श्रमिकों को धावा दल ने भी मुक्त कराया है। सभी श्रमिकों को 3,000 आर्थिक सहायता तत्काल दी गई है और आगे इन संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज उद्योग विभाग बिहार पटना के सचिव ने जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में पीएमईजीपी और पीएमएफएमई तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा की, जिसमें जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और डीजीएम बियाडा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज तथा अग्रणी बैंक के प्रबंधक उपस्थित रहे। इसमें उद्योग विभाग बिडार पटना द्वारा अपना परिचय देते हुए बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, उद्यमियों एवं लाभुकों का स्वागत किया गया और उद्योग विभाग से संचालित सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी उत्तम राजभर, पिता सीता राजभर, दूसरा संदीप राजभर और तीसरा मंटू राजभर तथा चौथा भुवनेश राजभर हैं। ये तीनों शिवकटई बहरवा थाना विजयपुर के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कांग्रेस पार्टी ने आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। थावे थाना क्षेत्र में 26 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाते हुए भगवानपुर में शराब तस्कर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया, जो थावे के केशोपुर गांव के अमरजीत मौतो का पुत्र बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी ने शराब तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी निशानदेही पर अमरनाथ प्रसाद के बांसवाड़ी से पुलिस ने 20 लीटर से अधिक देशी शराब को भी जब्त किया और अब इन दोनों ही मामलों में विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त लालू शर्मा को गिरफ्तार किया। यह फुलवरिया थाना क्षेत्र के दुबवलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पहले से इस पर न्यायालय में मामला लंबित था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुंचका गांव थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। यह बलेसरा गांव के हैदर अली हुसैन का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके घर से ही इसको गिरफ्तार किया है और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में सांसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने की। इस दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की अपील लोगों से की गई। इस बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष, जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, एडीएम, एसडीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एनएचआई के भी तमाम पदाधिकारी गण शामिल हुए। बैठक में रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था, ब्लैक स्पॉट की पहचान और सड़क की मरम्मत करने को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। तो वहीं एनएचआई के बगल के बस्ती के किनारे बैरिकेटिंग लगाने, अनाधिकृत कट को बंद करने के लिए और वाहन की गति सीमा पर ध्यान रखने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, जान बचाएं का नारा दिया गया तथा सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों से जनता को जागरूक करने के लिए और बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट बांधे चरपहिया वाहन नहीं चलाने, ओवर स्पीडिंग नहीं करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने से संबंधित अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। इधर माझा थाना क्षेत्र के गुलाम हुसैन टोला में 20 मई को मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इस युवती पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह की आए दिन हो रही घटनाओं से पुलिस भी परेशान है और समाज में एक गलत संदेश भी जा रहा है, इसी को लेकर युवती पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। इस संदर्भ में सदर 2 SDPO राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
0: मांझागढ़ थाना अंतर्गत गुलाब हुसैन टोला स्थित मोबाइल के टावर पर एक लड़की चढ़कर बार बार अपने प्रेमी से शादी कराने का जिद कर रही, अन्यथा वो आत्महत्या करने पर अड़ी हुई, जिसको देखकर आसपास के काफी लोग एवं ग्रामीण वहां जुट गए तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना मांझागढ़ पुलिस को मिलते ही थाना अध्यक्ष मांझागढ़ के द्वारा पुलिस बल के साथ टावर के पास पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा करीब 7-8 घंटा काफी मशक्कत के बाद उक्त लड़की को टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया एवं थाना लाया गया। उक्त लड़की के द्वारा यह कृत्य कानून विरोधी है। इस संबंध में जांचों उपरांत उक्त लड़की के विरुद्ध नियमानुकूल प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही आम जनता से यह अपील है कि अपने अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह का कृत्य करने से मना करें एवं समझाएं बुझाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो तथा समाज पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े एवं समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे।
2: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, 8वीं क्लास तक के सभी विद्यालय को जिला पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया बंद। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी ने बैलगाड़ी से किया विरोध प्रदर्शन। बाल विकास परियोजना को लेकर की गई बैठक। मेडिकल स्टोर के एक लाइसेंस को प्रशासन ने किया रद्द। और पानी में डूबने से हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
21: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
22: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
21: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
22: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
21: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
22: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
21: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
23: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
24: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड, नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।
19: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
19: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
22: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493456151 या 97-0-97-06-575।
6: सुनिए,
25: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
25: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
26: एडमिशन फ्री
27: कहाँ पर?
26: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
27: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
26: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
27: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
26: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
28: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। तो जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है, आज मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है। तो खैरियत बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सॉन्ग सुनना है, गाने का बोल है दिल परदेसी हो गया, सुनाना चाहती हूँ आपको। और शब्बा अपी रोशनी अपी साजदा जी, गुड़िया जी, आशा जी, निशा जी, सोनी जी, सिल्फी जी, हाजरा जी और हाजरा सिस्टर, खुशी जी, समीर भाई, कमरान भैया, शाहिल भाई, दीपक भाई, दिलीप भैया और इरफान भैया, गुलाम हुसैन भैया और वृंदर भैया, लवली भाभी, श्यावन शर्मा जी और सभी दोस्तों को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। शबीना खातून फ्रॉम दिलुलिया से इस मैसेज को की है और कई सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं जो कार्यक्रम शुरू होने से काफ़ी देर पहले मैसेज कर दिए हैं श्रोतागण। तो आप अपने मैसेज को रिपीट करें फिर हम आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा एक और मैसेज में लिखा गया है मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता मगर मैं पी भी लेता अगर तू शराब होती। सुनो भाई नमस्कार, और मैं भी आ गया हूँ आपके कार्यक्रम में रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कमाल की लाइन है और बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। दिल परदेसी हो गया।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे थे हम सभी, और काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे हम सभी और काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सुनो भाई कैसे हैं, और मेरा मैसेज देखते हैं, ऐसे 3-4 दिन पहले मैसेज किए थे, मैसेज शामिल नहीं किए। आज मुझे भी एक गाने सुनना है, और गाने का बोल है पर्दा के पीछे पर्दा, नासिक को पर्दा ना कर लो। तो मैं MD महमूद केरला से, तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। आगे कुछ और भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर राम राम प्रणाम, हम सोनू मिश्रा बिरवा से, और ढेर दिन बाद मैसेज कैले बानी, गाना सुना दे, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर ढूंढता हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सो हो रही है क्या। बिल्कुल सो तो स्टार्ट है, और एक गाने हम सभी इंजॉय कर चुके हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय नमस्ते MB2 शर्मा पिपराही से, और सॉन्ग अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा। तो आप कवाले गाने के फरमाइश किए हुए हैं, तो ये बहुत लंबे हैं जो हम 2-4 मिनट में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो आप गाने को चेंज करते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसे गाने की फरमाइश करें आप लोग। ओल्ड इसलिए डिमांड किया जाता है, स्पेशली ओल्ड गाने के लिए ही बनाया गया है, और साधारणतः गाने के लिए लंबे लंबे गाने सुनने के बाद से एक दो ही गाने में समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय का ये कार्यक्रम बना हुआ है, जिसके कारण ओल्ड ही गाने अधिकतर सुनाने की प्रयास रहती है, और क्या ही किया जाए। आप लोग तो 90s या उससे भी नए गाने की फरमाइश कभी कभी कई श्रोतागढ़ कर देते हैं, तो आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करें जो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर और किशोर दा के आवाज़ों में है, ऐसे गाने का फरमाइश करते हैं तो पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगली फरमाइश को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश, इंजॉय करते हैं हम सभी।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

रेडियो रेम सी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की फरमाइश भी पहुँची है और काफ़ी लंबे गाने हैं और आगे मैसेज है। और अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है सोनू मिश्रा जी की तरफ से, और गाने का बोल देते हैं, दीवाना तेरे नाम का घर ढूँढता हूँ। और आगे भी मैसेज कई पहुँचे हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक यू गाना प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज, हाय मैं श्यामदेव माझी भिदिरवा गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर जी हमार गाना सुना दे, रेडियो सुनाता नहीं। बिल्कुल रावर भी फरमाइश हम पूरा करें, और MSS के करे वाला बानी, ओह तो रावर ही फरमाइश हम प्ले करे जा रहा बानी सोनू मिश्रा जी, आप परेशान मत हो। कि आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते कैसे हैं आप, मैं सोनी गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बन रहे आप कार्यक्रम के साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और हाय नमस्ते बिटू शर्मा, तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, हम सभी इंजॉय करते हैं।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दे श्री कृष्णा साड़ी को।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे सोशल लेसमेंस फरमाइश का। और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हैं और गाने की फरमाइश भी है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश अगली पूरी होगी। और इस मैसेज को पहुँचाया गया है बीरमा से, श्यामदेव माझी जी के तरफ से, और गाने का बोल दिया गया है तूने काहे को दुनिया बनाई। तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सर जी गाना बजाने के लिए, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए, और कहते हैं गुड नाइट। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या चाहूं रब से तुझे पाने के बाद, क्या चाहूं रब से तुझे पाने के बाद, किसका करूं इंतज़ार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इश्क करने के बाद। सुनो भाई शामिल कर लीजिए दिलीप राम। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बने रहो हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं और मैडम भी। तो बिल्कुल आप दोनों का स्वागत है, और कहते हैं कि तो आज मैडम जी को एक सॉन्ग सुना दें। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल बने रहो हमारे साथ आप दोनों। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हाय MB2 शर्मा, तो आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और अगली फरमाइश आपकी होगी। फिलहाल बन रहे हमारे साथ, एंजॉय करते हैं फिलहाल।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर

काफी प्यारे सॉन्ग रेडियो रेमसीम 94.4 एफएम पे मुकेश जी की आवाज में सुन रहे थे हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश पूरी होगी बीटू शर्मा जी की और इनकी फरमाइश हम सभी एंजॉय करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, मेरा नाम है राधा कुमारी और मुझे ये गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी

रेडियो रेम 94.4 एफएम सुन रहे हैं हम सभी, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। चलिए आपकी सॉन्ग सुनाते हैं, और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरेवर नंबर 1 गोपालगंज से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, और इन्होंने बीच से गाने के नाम बताए हैं। गाने का मुख्य नाम है रब्बा, मेरे रब्बा की मैं दिल लगाया रे। उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज़ में है। इंसान मूवी से, और मूवी 2005 में आया हुआ था। और आप लोग जब भी गाने के फरमाइश करें तो क्लियर नाम पता कर ले, फिर गाने के फरमाइश करें। हम लोग को थोड़ा इसकी चाहत रहती है कि पता नहीं ये गाने हो या ना हो, तो आप लोग ऐसे गाने के फरमाइश करें जिसको आप जानते पहचानते हो, और पूरा नाम के साथ। आगे मिसेज पहुँचे हुए हैं, और लिखा गया है कि हाय नमस्ते। नमस्ते, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आप कौन है अपना परिचय दें। और आगे बढ़े तो आगे तो बिल्कुल आपकी मैसेज तो हमने देखा, लेकिन आप के जवाब हमने बता दिए हैं कि हाँ कार्यक्रम चल रहा है, और फिर आप मैसेज कर रहे हैं कि पता ना, आप लोग नहीं बता रहे हैं। तो हम तो बता चुके हैं, फिलहाल आगे हम बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश प्ले करेंगे और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे हम सभी एक दूसरे के साथ। रेडियो 94.4 एफएम पे सोनी जी की फरमाइश।

काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी रेडियो रामझिम 94.4 FM पे सो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और आगे देखे तो समय जो है समाप्ति के करीब है, तो अंतिम गाने हम प्ले करेंगे और आगे गाने और गाने के फरमाइश करने वाले वीरेंद्र गुप्ता भैया और इनके माध्यम से मैडम जी फरमाइश कर रही हैं लवली गुप्ता। और गाने के फरमाइश किया गया है महबूब मेरे मैंने डेडिकेट पहले हमको फिर शफाक सलोनी हिना आशा निशा गुड़िया खुशी सबा रोशनी शाहजहाँ सबीता सबीना सोनू बाबू को और सभी बाकी श्रोताओं को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो ही गया है, लगभग कुछ सेकंड बाकी हैं। तो आगे गाने प्ले करने के बाद से फिर से मैसेज शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा, तो अंतिम गाने यही रहेगा और जो भी श्रोतागढ़ छोड़ जा रहे हैं नाराज़ नहीं होना है और समय होते तो बिल्कुल आप सबकी भी फरमाइश हम प्ले करते। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग रब्बा मेरे रब्बा रब्बा क्यों यह दिल लगाया रहे। चलिए इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से। आगे मैसेज तो कई है लेकिन हम मैसेज शामिल नहीं करेंगे और गाने की फरमाइश भी पूरी नहीं करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करेंगे अंतिम गाने एंजॉय करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं,
1: नहीं कभी नहीं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भाई लड़की पागल लगती है, इसका दिमाग ठीक नहीं है क्या?
1: हम पागल लोग का थी।
0: उल्टा सीधा इल्जाम हमारा पर लगाती हो। अरे तुमको पता नहीं है कि हम गांव गांव में ऐसी योजना चलाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान की छवि बदल के रख देंगे, समझी?
1: अच्छा सुना।

0: सबसे बड़ा काम कौन करेंगे देखो हम बता रहे हैं।
1: हम बताओ जल्दी बताओ।
0: वृद्धा पेंशन बुढ़ा और बुढ़ी को दिलाएंगे।
1: ये काम तो पहले करिया।
0: समझ रही हो ना?
1: हाँ।
0: अब तुमको लग रहा है कि तुम लाइन पे आ रही हो।
1: लगा तो कुछ काम करवा।

0: विषय में बहुत ज्यादा जानती हो।
1: अरे बड़ा लोग का जानी ला।
0: तो ठीक है, एक बात हमारा ही सुनो। मान लेते हैं भाई कि पिछली बार जब हम चुनाव जीते थे तो कुछ नहीं कर सके, तो उसका कारण क्या था तुमको मालूम है?
1: ना मालूम ना, बतावा।
0: देखो भाई, हम 5 बार तो चुनाव हार गए।
1: अच्छा।
0: 1 बार टिकट लेने में 5 लाख रुपया लगता है, तब 5 बार में 25 लाख रुपया हमारा तो चला गया। तो पिछली बार जब हम जीते थे तो अपना वही पैसा वसूल करने में रह गए। अब की बार जीताओ, हम वादा करते हैं हिंदुस्तान की तस्वीर बदल देंगे। समझ रही हो?
1: हाँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
2: लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हेलो, मैं काजल राघवानी। पटना से पाकिस्तान के फुल वीडियोस आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स चैनल पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
1: मैडम
2: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना।
1: अभी नाम नहीं पहचान में आया मेरा।
2: साथ मास्टर धनाव से।
1: जी धनाव से।
2: जी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर।
1: पहला कॉल लगाए ना?
2: जी जी।
1: अभी ट्राई किए, देखे 11 बजे तो लगाए तो मैं बंद बता, फिर दोबारा किए तो लग गए। और सब सुनाइए क्या हाल चाल है?
2: सब बढ़िया, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल?
1: अभी गेहूँ तो कट रहा है हम लोग का तरफ, कल परसों हम लोग का भी कट गया।
2: अच्छा, आपका अभी फाइनल हुआ कि नहीं?
1: हाँ हार्वेस्टर से कट गया है। कि
2: चलिए बढ़िया, मशीन से?
1: हाँ हार्वेस्टर से। काम लगन का काम चल रहा था, हाथ से कटाएगा धान भी कर जाता है हार्वेस्टर से, गेहूँ भी।
2: अब इधर काम उसमें करेंगे तो फिर अपना काम तो नहीं होगा ना, दुकान वाला सिलाई।
1: लगन का काम चल रहा है
2: तो इधर भी भीड़ है, तो मशीन से ही सही है, कटवा दीजिए।
1: ठीक। और हमको कहना है कि आपका जो रिमझिम का मालिक है, जो सर भी है, जो यार बोस में गाना चलता है, जो गाना जब वेटी पर आता है ना असली मोड़ पर, तो वही सब कट कर दिया जा रहा है।
2: ये
1: दो
2: तो...
1: बार हुआ है, दो तीन बार हम सुनते सुनते उनका पे आ गए। जो गाना असली मोड़ पे चलता है अपना, तो वही से कट कर देंगे।
2: अब ये आप उन्हीं से बोलिए ना, संदेश मिला में कहिए।
1: हाँ हाँ, संदेश मिला होता है रविवार को।
2: जी रविवार को होता है, लेकिन आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं उसमें।
1: अच्छा, उस वाला नंबर पर? 21 वाला
2: तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर है।
1: हाँ हाँ हाँ, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का
2: नहीं, आपको संदेश मिला इसी जो नंबर पे व्हाट्सएप शो करते हैं ना योर वॉइस।

0: उसी पे आप अपना संदेश मिला व्हाट्सएप कर सकते हैं
1: जी,
0: नहीं तो ईमेल कर सकते हैं
1: जी।
0: जी तो कभी भी आप भेज दीजिएगा, संडे को उसका प्रसारण होता है।
1: संडे का ना 7:30 से ना
0: 7:45 से
1: शाम में
0: और सुबह में भी होता है 7 बजे से शायद उसका प्रसारण रिपीट
1: सुनते हैं।
0: तो उस दिन आपका उसका प्रसारण होता है, पूरा एक सप्ताह में जितना आया होता है।
1: आज तो ये चलेगा,
0: हाँ आज चलेगा रिकॉर्डिंग फाइनल होने के बाद।
1: जिगर मूवी का गाना है मोहब्बत से खुशबू, मोहब्बत है लहरा, मोहब्बत से कैसे बिछाएगा पहरा।
0: जी जी
1: जी 8:30 का गाना है और सारे रेडियो का डेलीगेट रहेगा और आपको भी और में काम करते हैं, आपका प्रोग्राम तो सुनते रहते हैं हम लोग।
0: जी जी चलिए तो फिर ठीक है।
1: ठीक है मैडम, हम लोग भी काम कर रहे हैं अपना, आपका प्रोग्राम चल रहा है।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मैं इसमें कॉल।
1: चलिए धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, de bajti hai to kehte hain hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Bhage bhage phirte hain.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्ते मैम।
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमशन 90.4 FM में।
5: और बताइए,
4: सब बढ़िया? आप बताइए, आप कैसे हैं?
5: हम भी सही हैं।
4: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको रवि जी?
5: वो जो कौन सिंह के नए गाना नहीं आया है, नाम लिख दो सजाने वाले सरिया पे, वही वाला सुनाइए यार
4: जी। और सुनवाना भी है?
5: नहीं को यही सुनवाना है, सुनवाना है और सुनवाना।
4: तो आज छुट्टी में है कि ड्यूटी में है?
5: ठीक आती हूँ।
4: चलिए बढ़िया है, तो प्ले करे गाना?
5: हाँ, थोड़ी आराम कर लिए, समय हरदम तो देखिए जानता है।
4: प्ले कर रहे हैं गाना आपकी?
5: हाँ करिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
1: जी क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम रेडियो रिंजन सुनते हुए मैम, और सोचे टाइम हो गया, फोन भी लगाते फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है
0: जी? आज हमको सुनना दीजिएगा, कितने फिल्म है कितना दूर कितना पास का सुनवा दीजिएगा, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते मैम
1: जी। कितना दूर कितना पास का टाइटल सॉन्ग?
0: जी जी, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंजन दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: ओके चलिए तो प्ले करे गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम। मैं राजेंद्र कुमार जोधिया जिला हिमाचल मंडी से बोल रहा हूँ।
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
1: बस ऐसे ड्यूटी आए थे काम पर, काम चालू करवा दिए हैं, बस आपके प्रोग्राम सुन रहे थे, बस फोन मिला रहे थे 11 बजे से तो लग नहीं रहा था, अभी पता लगा मैसेज आया तो पता लगे चालू हो गए रिकॉर्डिंग, तो मैंने फिर ट्राई करना शुरू कर दिया। आज लग गई कॉल हमारी।
2: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है?
1: आज हमें सुना दीजिए नाम मूवी का, कई दिनों के बाद वतन की चिट्ठी आई
2: जी, और सुनवाना भी है।
1: हाँ, हमारे अपने ऑनर हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: मैम नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैम, शैलेश कुमार बाराबंकी से।
4: जी क्या हाल चाल है शैलेश जी?
5: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
4: हम भी बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
5: आज गाना सुनवा दीजिए साजन मूवी का, ये तो जिए कैसे बिना।
4: जी और सुनवाना भी है?
5: हाँ सुनवाना है अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को, आपको, तमाम रेडियो रिमझिम सुनने वाले को और तमाम उन लोगों को जो किसी के बगैर नहीं।
4: जी तो प्ले करे गाना आपकी।
5: ओके मैम
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय चॉइस कॉल किए।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमी 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: रामा जी प्रसाद छावर से
0: जी। क्या हाल चाल बा रामा जी?
1: हाल चाल तो अपना पसीना छूट रहा है, गर्मी भर भर क्या कहा जाओ। आप एसी लगवा पूरी घर में, ना पंखा से गर्म हवा निकलता
0: जी। तो लगवा ली एसी, क्या दिक्कत बा?
1: गाना सुने बा गर्मी वाला, ठीक है। दोपहर में गोरेवा जरेला, रामा गोरेवा जरेला, तनी हमके गुजिया उठाए मोरे मिटवा
0: जी।
1: हाँ सुने खाली जितना लोग सुनता सब कुछ सुनी, हम सुने रघुआ मन सुने।
0: ठीक बात, चलिए ठीक बात।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन गिनने बजती है तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते,
5: नमस्ते। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
6: वीर बहादुर चौहान
5: जी। कैसे हैं वीर बहादुर जी?
6: ठीक है जी मैम।
5: जी तो क्या हाल चाल है?
6: अपना सब सुनाइए।
5: मेरा भी बढ़िया है।
6: आज रूम पर बैठे हैं, छुट्टी मार के ड्यूटी में गया। थोड़ा जो अंगूठा है ना, अंगूठा का जो बीच है ना, उसमें थोड़ा कट गया
5: जी,
6: इसलिए बैठे हैं, दवाई करा रहे हैं।
5: चलिए तो अभी ठीक है ना?
6: अभी ठीक है। सॉन्ग सुना दीजिएगा, पवन सिंह का व्यवसाय वाला।
5: पवन सिंह का व्यवसाय वाला गाना।
6: ऐसे कैसे टूट गया तेरा मैं के जोड़ी, सही गाना है, वही सुना दीजिए
5: जी। बिल्कुल, तो प्ले करें गाना आपके।
6: हाँ मैम
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्या इसमें कॉल किया।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये नारे फैम।
5: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
6: जी वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
5: सफेद अली अकेला से। कैसी है, उम्मीद है कि अच्छी होंगी।
6: जी जी बिल्कुल बढ़िया है।
5: जी मैम बहुत देर से हम ट्राई कर रहे थे, एक घंटे से लग ही नहीं रहा।
6: ये अभी लग गया है ना।
5: जी मैम। जी मैम मुझे गाना सुनना है।
6: बिल्कुल सुनाएंगे, गाना बता दीजिए नाम गाने का।
5: मुझे गाना सुनना है मत पूछ मेरे महबूब सलाम।
6: जी और सुनाना भी है
5: आप स्पेशली सभी सुनने वाले को।
6: ओके चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
5: मैम एक बात,
6: जी जी
5: ये टाइमली नहीं बज पाता है।
6: टाइमली बजता है, 5 से 7 के बीच में कभी भी आएगा
5: तो उसका कोई टाइम नहीं रहेगा, मतलब कि हम कब सुनेंगे तो कब पता चलेगा।
6: 5 से 7 के बीच में कभी भी आ जाएगा।
5: उसका कोई हिंट नहीं होता है मैम। उसका कोई हिंट नहीं होता है।
6: कोई हिंट मतलब,
5: मतलब कैसे इस टाइम में सुनेंगे तो हमारा बजेगा।
6: तो बोल तो रहे हैं शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ जाएगा। पहला कॉल आपका होगा या लास्ट कॉल आपका होगा ये नहीं बता सकते।
5: यही तो पूछ रहे थे मैम। ठीक है, थैंक यू।
6: जी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो मैं जो इसमें कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: में। नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कन्हैया दास, सरहार से।
1: जी, कैसे हैं कन्हैया जी?
0: बस ठीक है, अपना सुनाइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था?
0: बस इधर है, काम है, कटनी लगा हुआ है। वही क्या करेंगे इस टाइम।
1: अभी तो कटनी पिटनी का ही टाइम है। तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना कल तो हम लोग भेजा था, वो बजबे नहीं किया। वही जो नथिया गढ़ैला उधार का है,
1: उधार सैया जी है ना?
0: हाँ जी
1: जी। और सुनवाना भी है गाना?
0: हाँ, यहीं पे है हमारे सब बंदे।
1: चलिए,
0: पांच छह आदमी है, सुभाष है और एक भोला है।
1: तो प्ले करेगा ना
0: जी?
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।

एकरा में राजन भैया मरद लोग के दोस्त नहीं थे। जब गाना नहीं के गढ़ल रहा और जब उनका भी पैसा नहीं करा था मेरा रुपया पैसा उनका के पाल जरूर इमोशनली ब्लैकमेल करा था गाना खाती है कैसे।

जब भी हम सब सवर के अपना सखी लोग के साथ बाजारे जाए ला आ जब भी वो देखे ला तो सबके सामने हमारे के टोके लागे ला तातना सजल सवरल के का फायदा कि लोग कहे ला कर्जा करके बनी ले बड़ी तारा ढेर पता बा सची सवर हमारे मुश्किल

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone gindi bajti hai to kehte hai hello.
5: Hello, hello, hello, hello, hello.
4: Bhage bhage phirte hai.
6: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: सीताराम सोनी जी, हम इमरेश कुमार शर्मा बोल रहे हैं दिग्मा से।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी कुछ 11 बजे से ट्राई करते करते लगभग कहीं नहीं मिल रहा था, लग ही नहीं रहा।
6: अभी लग गया ना?
7: जी अभी तो लगा। लास्ट में कॉल लगा हुआ है तो गाना बज जाएगा ना मेरा?
6: जी बिल्कुल बजेगा, कहीं नहीं बजेगा।
7: जी जो शो चल रहा है और चॉइस बोर्ड में उसमें कॉल का माध्यम बंद कर दिया गया है क्या?
6: नहीं ऐसा तो बात नहीं है, कॉल का माध्यम चालू है।
7: कॉल किए थे तो सनू सर उठाए थे, बोले थे कि व्हाट्सएप कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कॉल से बात नहीं हो पाएगा, उस नंबर से तो बात नहीं होता, वो उठाए थे सोनू जी।
6: तो आप किस टाइम कॉल किए थे कि सोनू जी रिसीव किए थे? वो तो देखे नहीं है। योर
7: वॉइस चल रहा था तो हम रेडियो से सुन कर उसके बाद कॉल किए।
6: पता नहीं आप किस टाइम, सोनू जी तो रहते नहीं है जब शो चलता है तो।
7: जी जी
6: जी, क्योंकि सोनू जी हम यहाँ आते हैं उससे पहले ही चले जाते हैं, उनका एग्जिट टाइम 9 बजे का है, वो 9 बजे निकल जाते हैं, नाइट में रहते हैं।
7: जी जी
6: जी, तो हो सकता है कि आपका नंबर कहीं और कनेक्ट हो गया होगा।
7: हो सकता है,
6: क्योंकि अभी ऐसे काफी टाइम, काफी बार होता है कि कनेक्ट हो जाता है, कहीं और लगा और कहीं और चला जाता है।
7: जी जी
6: जी, तो हो सकता है लेकिन बंद नहीं हुआ है, चालू है।
7: जी हमको गाना सुनना है। गाना सुनना है जो खेसारी लाल का नहीं है, बालमा बिहार वाला, यही कंट्रोल सॉन्ग सुनना है।
6: और सुनवाना भी है?
7: जी करविया से है मनोज भैया और छोटपुर से है अनिल भैया और हमारे ही करीब का है जो तप भैया और कलर है बिपिन मास्टर और राजदेव जी और रामप्रीत जी और आप जितना रंजन सुनने वाले हैं सब लोगों के साथ।
6: जी तो प्ले करेगा ना?
7: जी, जी
6: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
0: जी नमस्कार नमस्कार, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोढ़ा मन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब।
1: जी क्या हाल चाल है?
0: जी मेरा हाल चाल एकदम बढ़िया है। अपना सुनाए, आप कैसी है? आपकी पूरी होल टीम कैसे है?
1: जी सब कुछ बढ़िया है और टीम भी बढ़िया है। आप बताइए, आपके घर परिवार सब लोग कैसे हैं?
0: एकदम सब घर परिवार ठीक है, हम भी ठीक है, अच्छे हैं। आपसे बात कर रहे हैं, अभी अपना रूम में बैठे हैं, थोड़ा आपसे बात कर लिया जाए। ढेर दिन हो गया बात होता हुआ
1: जी,
0: तो हम सोचे थोड़ा आपसे बात किया जाए, अपना फरमाइश बताए, अपना मनोरंजन करे।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनना है?
0: और सब उधर का मौसम बताइए, उधर का मौसम क्या है?
1: इधर का मौसम बिल्कुल बढ़िया है।
0: चलिए इधर भी उसे ही है।
1: जी जी, तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
0: आज गाना सुना दीजिए, कहिए ना कि सबसे तो पहले हम कहेंगे क्या कि एक महान गायिका है, उनका निधन हुआ था काल परसों काल, आज तो उनका अंतिम दाह संस्कार है। इसके लिए कहिए ना जो बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारे वैसे उनका घर परिवार में, कहिए ना जो शक्ति प्रदान कर सहनशीलता हुए उनका परिवार में। कहने के मतलब क्या है कि जो उन्हें के ऊपर कोई गाना हो तो बजाइए, वो गाना है दिल का चीज है ये जान लीजिए, बस एक बार कहा मान लीजिए।
1: और सुनाना भी है गाना?
0: सबसे पहले आपको सुनाएंगे, आपको रेडियो होल टीम रंजन संपूर्ण परिवार को
1: जी,
0: और दोस्त में हो गया से खाना से मोहम्मद साबी जी, गमर से उत्तम कुमार जी, रामलक्ष सत कुशवाहा जी, कृति बघा से अरविंद कुमार अकेला बैकुरदान से, नरेश सोनी, नसीरुद्दीन खान, दीपक दास, उदयमान ठाकरे, जुन्ना साहब, धर्मेंद्र यादव रूप मेथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, चंपा धनराम भैरव गंजी, शंकर प्रसाद बाबू, परसनाथ कुशवाहा, परस शर्मा, राजेंद्र यादव भारती, संतलाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से, आम नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्त से, विशेष करके रंजीत से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण पर्व, खास करके मौजवलिया को सलाह जानकारी है उसको सुनाते हुए, अभी रामचंद्र सिंह मुखिया जी के सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नेहा बोल रहे हैं मैं
3: जी। क्या हाल चाल है नेहा जी?
2: अपना
3: हमारा भी बढ़िया है।
2: नाश्ता पानी हो गया? चलिए ठीक है।
3: ये आपका हो गया है
2: जी?
3: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
2: गाना सुनना है जाते हैं पर दे सकती है, जाते हैं खत लिखा।
3: अच्छा, और सुनवाना भी है
2: आपको? जितना रेडियो रिमझिम जो है दोस्त तक सुनते सब कुछ।
3: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना।
2: जी दीदी नमस्ते।
3: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रेंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी, हम कहले रहली ना, ये बाइल हो बाइली ना सुनी।

0: हाँ तो करो लोग किसानी, हम जाते नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

मायरे तोहरा नखरा जैसन फिल्म की रनिया के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा, बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा।

0: पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरनवा के बाप तोरा छोड़ गई ले हमरे अंगन वहाँ
1: से निकट से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmi Gaane channel.
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना?
1: निरंतर नाम चल रहा है अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है, कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है, जिस दिन अव्यावृत भजना अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, अब कुछ भी हो। अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। अरे मस्त, नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां, मनुष्य जीवन में इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुए, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं, भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं। इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं, हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आप नहीं करनी चाहिए, आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण, वो आप हो क्या?

0: वेश बदल लेना भगवान की शरण है?
1: नहीं,
0: इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। तो आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर, बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्या है जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल, दो साल, चार साल, पांच साल, आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार साढ़े चार साल रह गए, अब चार साल रह गए, अब पांच साल, पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर, आप विचार करो क्या साधु का जीवन है, क्या साधु का जीवन, ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है, बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना, या समस्या में फंस कर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है।
2: पर जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं।
0: अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य है, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो, वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में है। यही बात है। सावई मन कृष्ण पद अरविंद, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगाए तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े ये सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता, डॉक्टरों की जरूरत क्या है। बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो भी बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया, खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है।
2: मर्जी ऐसा कहा जाता है, वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया।
0: तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ले जाओ हो जाए, और नहीं होना होगा तो चाहे जाओ चले जाओ नहीं होगा। वो संयोग होता है, जैसे देखो आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया, बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया, आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं, हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता।
2: तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए हमारे जी?
0: सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है।
2: हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार, तो क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे हाँ मैं पास हो जाऊं।
0: तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है, उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका, इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया, नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता, हमारा कर्म। संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते पुण्य बढ़ते, संत दर्श जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ सुख बढ़ा, ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा। दिल